नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज के सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर, जिसे आप सुन पाएंगे अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट के साथ में। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: भाइयों ने बोनो जईवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियों बोनों नो रिश्तो है जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नो भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास ने असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
1: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ભાઈ બોનું ગીત તો આયશું પૂરું ને અણગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરું હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે કિસાન ભાઈ બોનું, અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડી દીધું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા વાળા હ કે આપણે બીજ ને ખાદ્ય સ્વરાજ શું કહેવાય અણા વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં પધાર્યા તો કહે શ્રીમાન પ્રમોદજી રોકડિયા સાહેબ. તો સબતે કે પહેલે આપણે હામરી લણાની વાત ને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: સભી શ્રોતાગણ આપકો બહોત બહોત નમસ્તે.
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડે હૈ તો આજ હમ આપસે કાર્યક્રમ મેં જાનને વાલે હૈ ખાદ ઓર બીજ સ્વરાજ કો લેકર. લેકિન ઉસસે પહેલે સર હમ આપસે યે જાનના ચાહેંગે કે આખિરકાર સ્વરાજ હોતા ક્યા હૈ.
1: કિસાન ભાઈઓ ઓર મેરે સભી શ્રોતાગણ, જો અપન સ્વરાજ કી બાત કરતે હૈ કે સ્વરાજ
0: જી હા
1: ખુદ કા રાજ, હમ મહાત્મા ગાંધી કે સંદર્ભ મેં યે શબ્દ કો બહોત અચ્છે સે સમજતે હૈ. મહાત્મા ગાંધી ને યે સ્વરાજ કી અવધારણા દી થી કે હમ એસા આત્મનિર્ભરતા એસી બનાએ કે હમારે કો બહાર સે આવશ્યકતાએ કમ સે કમ પડે. બહારી બજાર, બહારી દુનિયા, હમારે અંદર ઇતના, હમારા જો ગાંવ કા વિકાસ હૈ ઓર હમારે જો જમીન કા વિકાસ હૈ, જો હમારી પ્રકૃતિ હૈ ઉસકા હમ ઇસ તરહ સે ઉસકો ચક્રી ફસા રૂપ મેં કામ મેં લે કે હમે કમ સે કમ બહાર સે હમે બહોત નિર્ભરતા કમ હો,
0: યાનિ
1: કે ઉસમે એક આત્મનિર્ભરતા કા અંશ ભી હો ઓર હમ હમારે રૂપ મેં હમારા સમગ્ર વિકાસ ભી હોતા રહે.
0: જી બિલકુલ.
1: ઇસ સ્વરાજ કી મોટી મોટી ધારણા કો હમ ઇસ રૂપ મેં દેખતે હૈ ઓર ઇસલિયે ઇન ચીજો પે હી અપન બાત કરતે હૈ કે ભઈ હમ ખાદ ઓર બીજ સ્વરાજ, ખાદ્ય ઓર બીજ સ્વરાજ.
0: જી બિલકુલ.
1: તો ખાદ્ય મતલબ જીતને ભોજન હૈ તો ઉન ભોજન કે બારે મેં હમ બાત કરેંગે. હમારે જો કિસાન ઓર હમારી ખેતી જો હૈ ઉસમેં જો હમારે પાસ જીતને ભી ફસલે હૈ ઉસકા હમ કિસ તરહ સે પ્રયોગ કરે, હમારા ખેતી પે હમારે બજાર કી નિર્ભરતા કમ હો. એસા નહીં કે હમે બીજ લેને કે લિયે બજાર જાના પડ રહા હૈ, ખાદ લેને કે લિયે બજાર જાના પડ રહા હૈ, પાણી કા, ક્યોંકિ યે સારે સંસાધન જો હૈ વો હમારે પ્રકૃતિ મેં પ્રદત્ત હુએ હૈ ઓર ઉસી કા હમ ઉપયોગ કરતે હુએ હમારે ઉદ્યોગો કા વિકાસ કરે ઓર હમારે ખેતી મેં ઇસ તરહ સે હમ કરે તો હમારે ગાંવ કા વિકાસ હો, હમારે પરિવાર કા વિકાસ હો, ખેતો કા વિકાસ હો, હમારે પશુધન કા વિકાસ હો, હમારે જંગલ કા વિકાસ. તો ઇસ તરહ સે હમ ઉસકો વિકાસ કરતે હુએ ઇન ઇસ ચીજો કો દેખ સકતે હૈ.
0: જી બિલકુલ સર, આપને સહી કહા, ક્યોંકિ હમ દેખતે હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો ખેતી કરતે હૈ તો ઉસકે લિયે ઉન્હે બીજ કી આવશ્યકતા પડતી હૈ. અગર ઉનકી જો નિર્ભરતા હૈ બીજ કે લિયે બજાર આધારિત રહેતી હૈ તો ઉસકે લિયે ઉન્હે કિસી સે કર્જ લેના પડતા હૈ, ક્યોંકિ હમ દેખતે હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો અપને ફસલ કે અનુસાર હી અપની આજીવિકા ચલા પાતે હૈ ઓર એસે મેં તબ અગર ઉનકે પાસ પૈસા ન હો તો ઉન્હે બજાર સે કિસી સે ઉધાર લેકર પૈસે સે બીજ લાના હોતા હૈ ઓર એસે મેં હમ દેખતે હૈ કે બજાર સે જો હમ બીજ લા રહે હૈ ઉસકી ઇતની ગારંટી નહીં હોતી હૈ કે ઉસકા ઉત્પાદન હમે અચ્છે સે મિલ જાય. અગર હમારી કિસાન ભાઈ બહેન યે ખાદ ઓર જો બીજ હૈ ઉસકે સ્વરાજ કે મહત્વ કો સમજ પાયેંગે તો હમ દેખતે હૈ કે ઉનકી જો બજારી નિર્ભરતા હૈ વો કમ હો જાયેગી ઓર ઇસ નિર્ભરતા કો કમ કરના હમારે લિયે બહોત જરૂરી હૈ.
1: બિલકુલ. જૈસે બીજ કી બાત કરે અપન તો બીજ હમારે જો પારંપરિક રૂપ સે હમારે કિસાનો કે પાસ ખુદ કે બીજ હૈ ઓર કઈ સારી એસી કિસ્મે ભી હૈ જો ઉનકે પાસ પીઢીઓ સે ચલી આ રહી
0: હૈ. જી બિલકુલ સર.
1: અબ ઉન બીજો કા સંરક્ષણ કિસ તરહ સે કરે, ઉન બીજો કો કિસ તરહ સે હમ બચા કે રખે ઓર એક સિસ્ટમ મેં હમારા જો ડેવલપ હુઆ હુઆ હૈ કે કિસ તરહ સે બીજ બેંક બનાએ. હમે ગાંવ ગાંવ મેં દેખતે હૈ કે કઈ ઉન કિસાનો કે પાસ મેં કઈ સારે કિસ્મો કે બીજ ઉનકે પાસ મેં સંરક્ષિત હૈ ઓર આવશ્યકતા કે અનુરૂપ વો અપને ખેત મેં ભી કામ મેં લેતે હૈ ઓર અપને પડોસી કિસાનો કો ભી વો દેતે હૈ.
0: જી બિલકુલ.
1: જૈસે પૂરે ગાંવ કે અંદર કઈ સારે બીજ, કઈ સારી સબ્જીઓં કે ભી હૈ, કઈ સારે અનાજ કે ભી હૈ, દાલોં કે ભી હૈ ઓર કઈ એસે બીજ ભી હૈ જો પીઢીઓ સે ચલે આ રહે હૈ. જબકિ હમ બજાર મેં દેખતે હૈ તો બજાર કા જો બીજ આતા હૈ વો નયે તરહ કા જો બીજ જરૂર હોતા હૈ લેકિન ઉસમે હમેશા ઉસકો બાર બાર ખરીદના પડતા હૈ બજાર સે તો ઉસકો ઉસમે લાગત લગતી હૈ. તો જબ આત્મનિર્ભરતા કી બાત કરે તો હમ હમારે બીજ કા ઉત્પાદન ખુદ કર લે, ખુદ કે બીજ કો હમ, ક્યોંકિ અપના જો બીજ હૈ હમારા તો ઉસમે હમારા એ વિશ્વાસ ભી બના હુઆ હૈ કે ઇસકે ઉપર જીતની તો હૈ ઓર વો બીજ જો હમારે જો વાતાવરણ કે અનુકૂળ ભી હૈ, ક્યોંકિ જો હમારે જલવાયુ જો હૈ વો ઉસ બીજોં કો માફિક હૈ.
0: જી બિલકુલ.
1: કઈ બાર બજાર કા જો બીજ આતા હૈ વો હો સકતા હૈ કે હમારે ખેત પે વો પૂરી તરહ સે ઉપજ કો દેને મેં સમર્થ નહીં હો પાતા ઓર વો જો નયે બીજ આતે હૈ ઉસમે કઈ જૈસે ભી હોતે હૈ કે જિસમે જૈસે ભી શંકર કહેતે હૈ અપન, તો ઉસમે કઈ હૈ ઉસકો અચ્છે ઉસકે ઉત્પાદન કે લિયે હમે ઉસકે ઉસકે અનુરૂપ હમે ખાદ ભી ચાહિયે, ખાદ પાણી ઉસમે બહોત પૂરા ચાહિયે. જબકિ હમ हमारे बीज जो होते हैं वो हमारे सीमित खाद के अंदर और सीमित, क्योंकि उसका जलवायु अनुरूप है वो,
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसमें वो अच्छी सी उपज दे पाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बीज बैंक की अवधारणा है वो हमें अपने किसानों के खेतों पे और अपने गांवों में लागू करके रखने चाहिए, ताकि जब खाद बीज हमारे पास होगा तो बीज स्वराज होगा, यानी बीज के रूप में हम निर्भर हो जाएंगे अपने ऊपर, अपने आत्मनिर्भर रहेंगे, हमारे को बीज पे बाजार पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जब हम बाजार पे निर्भर नहीं होंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा, हमें हमारा जो बीज है उसका भी हमें विश्वास है कि ये बीज हमारा इतना उत्पादन तो देगा ही,
0: जी जी,
1: तो हमें वो विश्वास ही बना रहेगा। फिर जो उसकी पोषण तत्व है जो उसके अंदर, क्योंकि हमारा बीज जो देशी किस्म का है और उसमें कुछ पोषकता भी है,
0: जी जी,
1: तो जो उसकी उपज आएगी, जो उसकी फसल आएगी वो हमारी पोषककारी भी होगी,
0: जी जी,
1: तो उससे हमारे जो घर का जो अपने परिवार के सदस्य है, गाँव के लोग है, तो उनका पोषण भी होता रहेगा। तो इस तरह से जब हम बाजार के बीज पे निर्भर कम हो जाएंगे और खुद के बीज को हम संभालना प्रारंभ कर देंगे, तो हमें बीज स्वराज की अवधारणा को समझ में आएगा कि किस तरह से हम बीजों पे बाजार पे निर्भर नहीं है और हमारा इन चीजों में, क्योंकि हमारे खेत भी उन बीजों को समझ रहे हैं,
0: जी बिल्कुल,
1: हमारे जो पोषण का जो हमारा पशु है वो भी समझ रहा है कि वो उसका कैसा चारा होता है, उनका भी तो हमें पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा,
0: जी जी,
1: तो इसलिए से उन बीजों को हमें संभालना पड़ता है और बीज बैंक की अवधारणा, ताकि वो बीज हमारा हाथ से कभी खो ना जाए,
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसको भी हमें समझ के रखना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन है अपने बीज को संभाल कर रखेंगे तो हम देखते हैं कि बीज स्वराज की जो अवधारणा है हम उसे पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खाद की जो स्वराज की कल्पना है उसे हम कैसे बना कर रख सकते हैं।
1: ये खाद्य स्वराज यानी कि जो खाने के जो अनाज है, खाने के अनाजों में अपन देखते हैं कि हम कुछ अनाज की ऐसी फसलें जैसे गेहूं है, मक्का है, या जो मोटे अनाज की फसलें हैं, कुछ हमारे दालों की फसलों के रूप में देखते हैं कि हम अपना मूंग है, उड़द है, हमारी अरहर है, चावला है, ये इस तरह की हमें दालें वाली फसलें हैं। तेल की फसलों के रूप में देखते हैं कि हमारे पास तिल है, मूंगफली है, सरसों है, तो ये इनके रूप में, और इसके अलावा जितना भी हमारे सब्जियां हैं जो हमारा, तो क्योंकि जितने भी हमारी सब्जियां जो हमारे यहाँ अपन देखते हैं कि या तो जो कुछ ऐसी कुकर बीट्स जो कहते हैं ना, जो बेले वाली फसल,
0: जी बिल्कुल सर,
1: जैसे ककड़ी है, लौकी है, तुरई है, जो भी बेलों पे लगती है,
0: जी जी,
1: या जो हमारे जो प्राकृतिक रूप से जो सब्जियां हमारे यहाँ है, भिंडी है, करेला है, टमाटर है, जो भी सब्जियां हमारे हैं जो हमारे पोषण में खाद्य में काम आती, खाने में काम आती, क्योंकि इन चीजों से हमें शरीर के लिए पोषण मिलता है।
0: जी हाँ।
1: जब अपन देखते हैं कि हमें 5 तत्वों की आवश्यकता होती है खाने में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, विटामिन कहते हैं, हमारा मिनरल कहते हैं, और हमारे इस तरह से हम जो 5 चीजों को हमारे भोजन में रखते हैं, तेलों को रखते हैं,
0: जी जी।
1: तो इससे हमारे शरीर की जो ताकत है वो बनी रहती है और हमारा भरण पोषण होता रहता है, और ये जो 5 चीजें हैं वो हमारे विभिन्न फसलों से अलग अलग रूप में मिलती है।
0: जी बिल्कुल।
1: कुछ तो जैसे दालें होती है, दालों में प्रोटीन की मांग होती है, अधिकता होती है, इस तरह से हम देखते हैं अनाज के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, सब्जियों में विटामिन हमें प्राप्त होता है, फैट जो होता है वो तेली फसल में होता है, जैसे सरसों है या तिल है या अपना मूंगफली है, तो इस तरह से हम जो भोजन के विभिन्न तत्व हैं वो इन सब्जियों और इन फसलों से हमें प्राप्त होते हैं। और ये फसलें क्योंकि हमें पता है कि हमारे बीज जो हैं वो पोषककारी हैं, उसमें अधिक मात्रा में पोषण तत्व है, तो हम उनका भी हमें अपने फसल के अंदर बचा के रखना पड़ता है, इसलिए वो बीज को और खाद्य को हमें जोड़ के रखना पड़ता है, कि उन खाद्य फसलों को हमें उसका ज्ञान हो, उन खाद्य फसलों को हमें खेत पे लगाएं और उन खाद्य फसलों को हम अपना बीज संभालें। साथ में जब हम स्वराज की बात करें तो हमें अपना खाद भी जो है ना, जो कहते हैं अपना फर्टिलाइजर, उसको हमें जैविक खेती के रूप में काम में लेना चाहिए। जैविक खेती से क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारे गाय है, भैंस है, या जितना भी हमारे पौधों के पेड़ वगैरह, पौधों के जो पत्ते हैं, शाखाएं हैं, उनसे हमारा जो खाद बनता है, कंपोस्ट कहते हैं अपन, तो उनसे भी बनता है, गौमूत्र से भी हमारा खाद का रूप में काम आता है, या हमारे घरों के अंदर जैसे अपन कहते हैं ना, कई हमारे जो राख है या छाछ है या दही है, घी है, ये भी हमारा, क्योंकि ये सब इसके रूप में हम जीवामृत है, बीजामृत है, ये जितने भी हमारे जैविक खेती के आदान है, जो उर्वरक के रूप में है, या कीटनाशक के रूप में है या हमारे फसल को बढ़ाने के रूप में
0: जी बिल्कुल,
1: फसल वृद्धि के लिए भी हमें आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीजें हमारे घर पे उपलब्ध हैं
0: जी हाँ।
1: तो हम इसके सुराज के रूप में इनकी खेती को भी किस तरह से अपनाएं, हम फसल को अपनाने के लिए, बचाने के लिए, बीज को बचाने के लिए हम उस तरह से खेती करें कि उनका हर एक साल में उन सारों पौधों फसलों का लगाए
0: जी हाँ।
1: इसलिए हम मिलवा खेती की बातें भी करते हैं कि जब हम मिलवा खेती होती है या मिश्रित खेती कहते हैं, तो उसमें क्या है कि कई सारे जैसे खरीफ के अंदर हम एक ही खेत के ऊपर 12 से 15 फसलों को लगा लेते हैं, तो उसमें क्या है कि 12 से 15 फसल लगा लेंगे, उसकी उपज हमारे खाने में भी काम आएगी
0: जी जी।
1: और उसका बीज भी हमारे पास हर साल उपलब्ध हो पाएगा
0: जी बिल्कुल।
1: तो हमारे बीज बैंक में जो हमने पिछले साल बैंक बीज लिया है तो वो वापिस उसमें नया बीज आ जाएगा
0: जी हाँ।
1: तो जब फसल चक्र के अंदर या अपना मिलवा खेती के रूप में हम जब ऐसी फसल लेते हैं तो हमारे प्रतिवर्ष बीज हमारा रोटेट भी होता रहता है
0: जी बिल्कुल।
1: और बीज बैंक में बनाएंगे तो हम क्या है कभी कभी हम कुछ फसलों को नहीं भी कर पाते हैं, तो हम उस बीज बैंक से हमारे जो गांव के दूसरे साथी हैं उनको भी दे सकते हैं
0: जी हाँ।
1: उनका बीज नया कोई बीज उनके पास है तो वो भी हम ले सकते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस तरह से बीज की स्वराज की अवधारणा या खाद की अवधारणा हमारे इस तरह से जारी रहती है
0: जी बिल्कुल।
1: और हमारे खेत पे हमें बाजार के ऊपर दूसरे जगहों पर हमें आधारित नहीं हो पाता
0: जी बिल्कुल।
1: ये भी हमारा है कि हमारे जो कृषि लागत में भी कमी आती है इससे कि जब हम खुद का ही हमारे पास बीज है तो हमें बीज खरीदना नहीं है
0: जी हाँ।
1: जब हमें बुआई करनी है तो हमारे पास बीज उपलब्ध है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास खेत बुआई करनी है और बीज उपलब्ध नहीं है
0: जी जी।
1: बाजार में देखते हैं तो बाजार में बीज मिल नहीं रहा। कई बार हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते
0: जी जी।
1: तो इन चीजों से बचने के लिए हम जब बीज बैंक और बीज और हमारा खुद का बीज है जिसपे हमें पूरा भरोसा भी है, पोषककारी भी है और हमारे जलवायु के अनुरूप भी है, तो इसीलिए हम बीज स्वराज की बात करते हैं, खाद्य स्वराज की बात करते हैं, ताकि हमारे पोषकता शरीर की बनी रहे, बीजों की उपलब्धता बनी रहे और हमारा जो वातावरण है जो उसके अनुरूप है वो उसमें लागू होता रहे
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने आज कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को बता दिया है कि बीज स्वराज और खाद्य स्वराज क्या है, और इसी के साथ हम ये भी जान पाए कि खाद का जो स्वराज की जो कल्पना है हम वो कैसे पूरी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहनों का खुद का बीज होगा, खुद के खाद होंगे, खुद के कीटनाशक पदार्थ होंगे, तो उन्हें बाजार की जो निर्भरता है वो उनकी कम हो जाएगी, साथ ही लागत उनकी जो है वो भी कम होगी, तो उससे उनके जो उत्पादन में वृद्धि होगी, उसी के साथ उनकी आजीविका के जो साधन है वो भी बढ़ जाएंगे
1: बिल्कुल, उसकी बचत भी बचेगी
0: जी बिल्कुल।
1: और उससे क्या है कि उस पैसों से वो अच्छे दूसरे काम भी कर सकता है, अपने परिवार के लिए जो संपन्नता है उसको भी ला सकता है
0: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी अच्छी जानकारी से आपने हमें अवगत करवाया,
1: धन्यवाद।
0: जेम की किसान भाई बोनो अवड़े अपड़े वेस्ट में प्रमोद जी रोकड़िया सर जुड़े तक हता ने एना अपड़ा ने घनी असल तरीका तक ही बता दीदू है कि हर ते गांधी जी ना जे स्वराज की कल्पना थी एने अपने पूरी करी शका। किसान भाई बोनो आशा कर रहा हूँ कि एज ए खाद ने बीज स्वराज ने लेने जे भी हमारी अब तक की बातें रही है ये बातें आपने गमी होंगा ने अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर जाते पहले हमारी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा

किसान भाई बोनो अणस गिथाते अमे कार्यक्रम खेती बाड़ी तकी पड़ा सूटा आशा कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आप तक जी भी बातें रही है ये बातें आपने कमी होगा। तो भाई बोनो आपने अमरु आज ना कार्यक्रम केव लगे इन्हें बारे में आप राय सुझाव अमने आली सको अमरे अणा पता माते अमरु पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाई बोनो फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक नया विषय ने हाते तारुदी राम राम राम राम।

0: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ एक दाड़ो स्कूल थे क्या आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे बाए हफ्तिंग ना कही दीदु ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध स पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है
2: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का
2: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
3: ओ अंजलि बोन इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी तो किस आपड़ो जीवन है
2: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
3: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थे कि आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
2: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बचपन खुशियों, सपनों और नई उम्मीदों का समय होता है। बच्चों को खुश रखने के लिए जरूरी है कि हम उनकी बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दें। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि बच्चों के खुशहाल बचपन में शिक्षक और माता पिता की भूमिका क्या है और बच्चे खुद अपने बचपन को किस तरह देखते हैं। बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातचीत होने वाली है कि बच्चों के खुशहाल बचपन में शिक्षक और माता पिता की क्या भूमिका है और किस तरीके से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य यानी कि तन के साथ मन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम में हमारे आज के विशेषज्ञ शिक्षक से कि किस तरीके से वे अपने बच्चों को समझते हैं और किस तरीके से वो बच्चों के खुशहाल बचपन की कल्पना करते हैं।
1: मैम नमस्कार।
2: नमस्ते मैम।
1: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: थैंक यू मैम।
1: जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: जी, मैं स्थानीय विद्यालय में जीव विज्ञान व्याख्याता के पद पे कार्यरत हूँ।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप एक शिक्षिका है, तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम में आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी के समय में बच्चों की जो चीजें हैं, जो सवाल पूछने के तरीके हैं, उनमें क्या बदलाव आया है और इसे आप कैसे समझती हैं?
2: जी मैम, अभी तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो गए हैं, क्योंकि AI का ज़माना है, तो बच्चे बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। उनको क्या, कब, क्यों, कैसे और तथ्यों पर आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं और करके दिखाने का और मतलब बहुत अच्छी तरीके से विस्तार में उनको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में सरल भाषा में समझाने को वो ज़्यादा कहते हैं।
1: बिल्कुल। तो जो बच्चों में बदलाव आ रहे हैं उनका शिक्षक को समझना क्यों ज़रूरी है?
2: जी मैम, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी, क्षमता, उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षक को हर बच्चे को समझना चाहिए कि कौन सा बच्चा कब कैसे सीख पा रहा है, उसका स्तर क्या है, उसकी रुचि किसमें है, इसलिए शिक्षक को यह जानना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम अभी हम देख रहे हैं कि समय पूरी तरीके से बदल चुका है, बहुत सी बार बच्चे जो है वो पढ़ाई को लेकर या उनके साथ कुछ अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है उसको लेकर भी वो तनाव और परेशान में रहते हैं। अगर विद्यालय में बच्चा चुप या शांत दिखाई दे और पहले से जो उसकी स्थिति थी, जो व्यवहार था, उसमें बदलाव हो, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए और उसकी स्थिति को शिक्षक कैसे समझ सकता है?
2: जी मैम, अगर बच्चा पहले बहुत अच्छा था और अचानक से वो चुप चुप रहने लग जाता है, स्कूल में आना कम कर देता है और अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति को समझने के लिए बच्चे से अकेले में हमको बात करनी चाहिए और उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि आपकी बात कहीं लीक नहीं होगी और खुद से बात करनी चाहिए, उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। और अगर अपन से सॉल्व नहीं होता है तो अपन स्कूल में हायर प्रिंसिपल, सीनियर्स दूसरे हैं, उनसे बात करके और बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी समस्या सुलझा सकते।
1: बिल्कुल। और हम देखते हैं मैम कि स्कूल में सब बच्चे अलग अलग होते हैं, कोई पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई अलग एक्टिविटी में होशियार होता है। ऐसे में जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उसका आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाएं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हम कैसे कर सकते हैं?
2: जी मैडम, मैं मानती हूँ कि हर बच्चे की अपनी क्षमता और गति अलग अलग होती है, पर अगर वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो खेल कूद में, अदर एक्टिविटीज़ में और रचनात्मक गतिविधियों में बहुत ही ज़्यादा होशियार होगा। तो जब भी वो कुछ ऐसा कार्य करता है तो उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को हमको बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसकी प्रार्थना सभा में और स्कूल स्तर पर उसकी बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। इससे बच्चे में क्या होगा, आत्मविश्वास डेवलप होगा और वो धीरे धीरे अपनी इस हुनर के साथ साथ वो पढ़ाई में भी अच्छा हो जाएगा और उसको सभी टीचर्स का मार्गदर्शन मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवा रही हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जो बच्चा अपनी भावनाएं कहीं व्यक्त नहीं कर पाता, कुछ चीजों को लेकर वो परेशान है, तो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना क्यों जरूरी है?
2: जी मैम, कि वो अपनी भावनाओं को समझा पाए कि मतलब वो किस चीज में अच्छा है, तो वो अगर टीचर से अपना मार्गदर्शन लेना चाहता है, वो टीचर से मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, ताकि उसका जो किस विषय में वो अच्छा है वो अपन उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। इससे बच्चे का अंदर का जो स्तर है वो अपन को पता चलेगा और वो किस चीज में होशियार है, अपन उसको उसी चीज की आगे बढ़ा सकते हैं उसको।
1: बिल्कुल। और बच्चे जो हैं उनके खुशहाल बचपन के लिए हम सभी जानते हैं कि शिक्षक और घर परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसे में शिक्षक और माता पिता की क्या भूमिका है बच्चों के खुशहाल बचपन के लिए?
2: बच्चों का खुशहाल बचपन जो है वो मैडम बहुत ही सुरक्षित होना चाहिए, उनके पोषण संबंधी सारे वैल्यूज हैं वो फुलफिल होने चाहिए, तो पेरेंट्स इस विषय में बिल्कुल जागरूक हो कि मेरे बच्चे को समान शिक्षा, समान अधिकार और पोषण संबंधी सारी मैंने व्यवस्था कर रखी और मेरा बच्चा कहीं पर भी किसी से भयभीत नहीं है। और स्कूल स्तर पर भी हमको ऐसा वातावरण देना चाहिए कि जिससे बच्चा को कंप्लीट गाइडेंस मिले, वो यहाँ पे बिना किसी के डरे रहकर बहुत अच्छे तरीके से सभी गुरुजन से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। तो इसके लिए हमको अच्छा पॉजिटिव स्कूल में सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए बच्चे के साथ और माहौल भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे का तब तक ही बना रहता है जब ये दोनों चीजें उनकी अच्छी तरीके से हो। तो इनको लेकर विद्यालय में क्या प्रयास किए जाते हैं और माता पिता को आप इन सारी चीजों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: जी मैम, जैसे कि आपने बोला, इन सब एक्टिविटी के लिए हमारे हमेशा मासिक तौर पर भी और इस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बैड टच गुड टच वाला और इनको आयरन सप्लीमेंट का जो अपन गोलियां हैं वगैरह, इन सबको मतलब इनका प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है मैडम। हमेशा ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे बच्चा ये सीखता रहता है कि उसके आगे ज़रूरत भविष्य में क्या क्या है। और पेरेंट्स का मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हमेशा अभिभावक और टीचर्स की मीटिंग होती है जिसमें हम अभिभावकों को बच्चे का जो प्रगति स्तर है वो हम उनसे साझा करते रहते हैं, जिससे कि पेरेंट्स अपनी समस्या बच्चों से रिलेटेड समस्या हमारे सामने रखते हैं और हम भी बच्चों का स्तर उनको बता देते हैं, जिससे कि दोनों टू वे कन्वर्सेशन होता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आज कार्यक्रम में हमने आपसे जाना कि किस तरीके से बच्चों में अभी के समय में बदलाव आ रहा है और किस तरीके से उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, तो आज जो कार्यक्रम हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे इस बदलाव को हम और आगे आने वाली पीढ़ियों तक लेकर जा सकें?
2: मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप गुरुजन हैं तो आप अपने वैल्यूज हैं, अपना मार्गदर्शन है, वो बच्चे को पूरी निष्ठा के साथ पूरे समर्पण भाव के साथ आपको बच्चों को देने का प्रयास करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: थैंक यू मैम।
0: जैसा कि श्रोता साथियों, अभी हमारे बीच में शिक्षक जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि बच्चे अपना काफी समय स्कूल में बिताते हैं, तो इस समय में शिक्षक जो है वो किस तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभाते हैं। यही बात करते हैं अब हम कार्यक्रम में हमारे कुछ बच्चों से कि किस तरीके से उन्हें स्कूल में अच्छा लगता है, कौन कौन सी चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे बच्चों की महत्वपूर्ण बातों को।
1: नमस्ते।
3: नमस्ते मैम,
1: आपका क्या नाम है?
3: परिकला।
1: आप कौन सी क्लास में पढ़ती
3: हैं? 11th B।
1: आपको सबसे ज्यादा अच्छा स्कूल में क्या लगता है और उसकी वजह क्या है?
3: मुझे स्कूल में सबसे ज्यादा यहाँ के टीचर और स्कूल का वातावरण सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और
1: इसकी वजह क्या है?
3: उसकी वजह यहाँ के टीचर बच्चों को समझते हैं और डांटने की बजाय प्यार से समझाते हैं।
1: स्कूल में आपको दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है?
3: दोस्तों के साथ खेलना, सामूहिक पढ़ाई करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: आपके शिक्षक की कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है?
3: वो हमें बिना डराए प्यार से समझाते हैं, वो सबसे अच्छा लगता है।
1: और आपके लिए खुशहाल बचपन क्या है और बचपन में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलना चाहिए जो आपको अभी तक मिला नहीं?
3: मोटिवेशन।
1: वो मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है अभी आपको?
3: फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स।
1: और क्या करना चाहते हो आप बड़े होकर?
3: आगे जाके तो बहुत कुछ है पर अभी सोचा नहीं है।
1: मतलब एक कोई मोटिवेट लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, क्या करना चाहती हो?
3: टीचर लाइन में जाना है।
1: क्यों, टीचर ही क्यों बनना है?
3: क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है मेरे लिए।
1: कैसे ऑप्शंस? मतलब
3: कि मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है।
1: अच्छा, इसलिए आपको बनना है। ठीक है, थैंक यू।
3: थैंक यू मैम।
1: आपका क्या नाम है?
4: खुशबू मेरा।
1: आपको क्या अच्छा लगता है आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा?
4: दोस्तों के साथ पढ़ाई करना और स्कूल का वातावरण।
1: आपके स्कूल में क्या ऐसा खास है जो आपने पहले कहीं स्कूलों में देखा नहीं है या अपने दोस्तों से सुना नहीं है?
4: यहाँ की साफ सफाई।
1: यहाँ की साफ सफाई आपको अच्छी लगती है। और क्या क्या एक्टिविटीज होती है आपके स्कूल में?
4: स्कूल में खेल का भी होता है, डांस और अन्य गतिविधियाँ भी होती।
1: और आपको पढ़ाई के अलावा कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा पसंद है?
4: पढ़ाई के अलावा डांस।
1: डांस करना अच्छा लगता है। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो?
4: मैं टीचर्स की लाइन में जाना चाहती
1: हूँ। अच्छा, और हम देखते हैं ना कि घर परिवार में बहुत सी बार लड़का लड़की, ये सुना है आपने, बेटा बेटी एक समान, ये सारी चीजें, तो आपका इसको लेकर क्या कहना है? आपके घर में या स्कूल में ये सारी चीजें होती हैं कभी?
4: नहीं, ऐसा नहीं होता।
1: घर पर
4: नहीं,
1: कहीं भी नहीं होता है? कभी नहीं सुना ये सारी चीजें?
4: नहीं।
1: या सुना है, किसी और के साथ होते हुए देखा है?
4: हाँ, किसी और के साथ देखा है।
1: तो क्या लगता है, क्या बदलाव करने की जरूरत है उसको लेकर?
4: बेटे और बेटियों में समान तरह से रहना चाहिए।
1: और जैसा कि आप बता रही कि आपने देखा नहीं है, कहीं और देखा है, तो आपने कभी

0: चल रही है वैसे के वैसे, मेहनत पूरी करेंगे।
1: अगर आपको कभी कोई परेशानी होती है या कुछ होता है तो आप किसको बताती हैं सबसे पहले?
0: मैं सबसे पहले मेरे टीचर्स को बताती हूँ, मम्मी पापा को और भरोसेमंद दोस्त को।
1: और जब आप उदास होती हैं तो आपको कौन सी चीज़ करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है?
0: मैं मेरा मन पसंदीदा काम करने से अच्छा लगता है और टीचर्स से बातें करके।
1: मनपसंद कार्य कौन सा है और टीचर कैसे सपोर्ट करते हैं आपको, क्या बातें करती हैं आप टीचर से?
0: टीचर से मैं जब कोई कठिन काम हो मेरे से नहीं हो तो मैम से बता के बातें करती हूँ, वो मुझे सही राह देते हैं।
1: ऐसा कौन सा कठिन काम है जिसको लेकर आप टीचर्स के पास कभी गई हैं और पेरेंट्स से भी आपने उन सारी चीज़ों को बात की है? कोई पड़ाव आया है ऐसा आपके जीवन में अभी तक?
0: हाँ आया है, तो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे वो नहीं आए थे, तो उसके बाद मैंने उस क्वेश्चनों को मैम के पास जाके फिर से पढ़ा था।
1: और आपके पेरेंट्स आपकी बातें ध्यान से सुनते?
0: कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं सुनते, नज़रअंदाज करते बातें।
1: तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने पेरेंट्स से, क्या उम्मीद रखती हैं आप अपने पेरेंट्स?
0: मैं पेरेंट्स से ये उम्मीद रखती हूँ कि वो मेरी बातें ध्यान से सुने, मेरी बातों को नज़रअंदाज ना करें और मुझे दूसरों से कंपेयर ना करें।
1: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप कार्यक्रम से जुड़ी।
0: थैंक यू मैम।
1: हेलो, आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम परी टेलर है।
1: आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर?
2: मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ।
1: अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो जीवन शैली वो पूरी तरीके से बदल गई है। आपके जीवन में अभी के समय के अनुसार क्या बदलाव आया है? हम देखते हैं कि बच्चे तनाव, स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें हम लड़कियों को लेकर भी सुनते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जिसे आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से साझा करना चाहेंगी?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस से फ्री रहेंगे तो वो पढ़ाई में अच्छा मन लगा के पढ़ सकते हैं और वो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: उनको जो चाहिए मतलब लाइफ में जो बनना है वो बन सकते हैं। वो
1: अभी के समय में आपने क्या देखा है अपने फ्रेंड्स में या जो दोस्तों से आप बातचीत करती हैं, ज़्यादातर तनाव होता क्यों है?
2: पढ़ाई को लेके कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी, इस तरह के फैमिली प्रॉब्लम भी कुछ होती है लड़कियों की कि जो पढ़ने नहीं भेजते कोई, लड़के लड़की में कोई भेदभाव होता है इस तरह से।
1: तो आपके आसपास में कोई ऐसा है?
2: नहीं, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना बहुत कुछ है।
1: बिल्कुल, तो सुना तो आसपास के लोगों से ही होगा।
2: हाँ।
1: तो कहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या बदलाव आप चाहती हैं कि लोगों में आए?
2: मैं ये चाहती हूँ कि लड़का और लड़की दोनों को समान माना जाए और दोनों को पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाए और दोनों को सपोर्ट बराबर मिलना चाहिए।
1: तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपको टीचर ही क्यों बनना है?
2: मुझे टीचर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे विदेश में नहीं जाना, मुझे फैमिली के साथ रहना है और यहीं रह के मेरे को मेरा करियर करना है।
1: ऐसा ज़रूरी है कि टीचर लाइन में जाएंगे तभी हम विदेश नहीं जा सकते, कोई और फील्ड भी ऐसी हो सकती है, टीचर ही क्यों?
2: मुझे टीचिंग लाइन ही अच्छी लगती है।
1: क्योंकि एक लड़की के लिए कहा जाता है कि टीचर बनना अच्छा है इसलिए?
2: नहीं, मैं ऐसा नहीं है लेकिन मुझे टीचिंग लाइन अच्छी लगती है इसलिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको टीचिंग लाइन अच्छी लगती है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा बदलाव आपके जीवन में जो आपको तनाव और इन सारी चीज़ों को लेकर जाता हो, या फैमिली में ऐसा भावनात्मक सपोर्ट आपको नहीं मिला हो, ऐसी कोई चीज़?
2: मुझे मेरी फैमिली से फुल सपोर्ट है, मुझे जो भी कमी हो वो पूरी करते हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू।
2: थैंक यू।
1: आपका क्या नाम है?
3: कृष्णा सेवक।
1: आप कौन से क्लास में हैं?
3: मैं 11B।
1: 11 में हैं आप। आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर?
3: टीचर।
1: टीचर बनना चाहती हूँ। आप सबसे मैंने बात की, सिर्फ एक ही है जो मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं, बाकी आप सब टीचर बनना चाहती हैं। उसके पीछे
3: ऐसे तो है ना, पुलिस बनना है, पर मैं सब यूँ बोलते हैं कि पुलिस लाइन मतलब अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए, ऐसे बोलते हैं।
1: ऐसा किसने बोला आपको? आपने देखा मतलब बहुत सी लड़कियां अभी पुलिस लाइन में
3: मतलब
1: हैं,
3: घर पे भी सब यूँ ही बोलते हैं कि ये पुलिस ही क्यों बनना है, यूँ अच्छी नहीं है जो, ऐसे बोलते हैं।
1: आपको भी ये फील होता है कि पुलिस लाइन में जाना अच्छा नहीं है?
3: नहीं, मेरे को तो यूँ ही है कि मैं ना जाऊँगी। यूँ
1: फिर कैसे जाऊँगी? पेरेंट्स मना कर रहे हैं
3: तो भी जाऊँगी मैं?
1: कैसे कैसे जाऊँगी?
3: मेरे पापा है ना, वो मुझे लगता है पापा मेरा सपोर्ट करेंगे।
1: आपके पापा आपका सपोर्ट करेंगे? कैसे करते हैं पापा सपोर्ट?
3: करते हैं कि है ना मतलब इतने बच्चे दूसरे आगे निकलो, तुम भी निकलो, यूँ
1: आगे बढ़ो,
3: आगे बढ़ो। हाँ।
1: तो अगर आपको कभी इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको पुलिस बनना है और पेरेंट्स और उनका कहना है कि पुलिस लाइन अच्छी नहीं, तो इस चीज़ को लेकर कभी स्ट्रेस या कोई ऐसी चीज़ आपने अपने टीचर्स वगैरह से कही है कभी?
3: हाँ, मैंने बोली थी ना सर, सो एक बार एक सर है ना, उनको बोला था मैंने, तो सर बोले थे कि ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई

0: करो, यूँ बोला उन्होंने।
1: फिर आपको भावनात्मक सपोर्ट कैसे मिल रहा है आपके टीचर से और घर परिवार से, इस चीज से आप बाहर कैसे निकल रही हैं कि अगर नहीं बन पाए या बन पाए कैसे क्या करोगी?
0: नहीं, मैंने मेरे फादर को बोला था कि है ना मैं पुलिस ही बनूंगी, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं बन जाना, पर एक बार पढ़ा ही करना है।
1: बिल्कुल, उसके लिए क्या क्या करना होता है आपको पता है?
0: उसके लिए है ना 12 पढ़ के फिर वो NCC क्या ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद एग्जाम देना,
1: कितने सारे पापड़ वगैरह बेलने पड़ते हैं, वही वो तो सब पता है आपको?
0: पता है मेरे को।
1: फिर भी आपको बनना है?
0: बनना है।
1: ठीक है, थैंक यू।
0: थैंक यू।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते मैडम।
1: आपका क्या नाम है?
2: हर्षित पाटीदार।
1: अच्छा, आपका क्या सपना है बड़ा?
2: मेडिकल फील्ड में जाना।
1: क्यों?
2: दूसरों की मदद करना फ्री में। आज के टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जब पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन उनका काम ठीक से नहीं होता, इसीलिए वो एक चीज़ बदलनी है हमको।
1: तो आप फ्री में काम करेंगे?
2: हाँ, फ्री में तो नहीं कह सकता क्योंकि आज के टाइम में फ्री में बहुत काम करना मुश्किल भी पड़ सकता है, लेकिन मैं उनसे कम पैसों में करूँगा जिससे गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकूँ मैं।
1: आपको पता है मेडिकल लाइन में कितनी सारी स्टडी करनी पड़ती है, कितनी मुश्किलें आती हैं? क्या सोच रखा है आपने, क्या योजना बना रखी है?
2: अभी तो फिलहाल मैं 12th साइंस में हूँ, अभी इसके बाद जाऊँगा फिर BSc नर्सिंग में करूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे को पेपर दूंगा और ये पेपर दूंगा फिर सिलेक्शन होगा, उसके बाद धीरे धीरे लोगों की मदद करूंगा यूं करके।
1: और अगर असफल हुए तो?
2: प्राइवेट करेंगे, मदद तो करनी है, कहते नहीं मैडम, मान लिया तो मान लिया और ठान लिया तो ठान लिया बस।
1: बिल्कुल, आपका जो ये वाक्य है वो बहुत ही अच्छा है, असफल हुए लेकिन प्रयास करना है, प्राइवेट क्यों करोगे, हार के बाद जीत है। आपने सुना है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कितने आविष्कार किए हैं, उसके बाद 11वीं बार में, कभी 10वीं बार में, कभी 5वीं बार में भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो आप प्राइवेट क्यों करेंगे? आपने ये नहीं सोचा कि मैं असफल होने के बाद भी निरंतर प्रयास करूंगा?
2: तो मैडम मैं दोनों भी तो कर सकता हूँ, अगर एक बार जैसे कि मेरा गवर्नमेंट जॉब मान लो कि नहीं भी हुआ, मैंने बहुत कोशिश की नहीं हो, लेकिन अगर मैं मेरे सपने ही नहीं छोड़ दिए थोड़ी गलत बातें, मैं मेरी नहीं लेकिन दूसरों की मदद करूँ। मैंने बहुत ऐसे देखे जो बेचारे गरीब होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो अमीर आदमी नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता
1: हूं। आपके अंदर ये थॉट कैसे आई?
2: मैंने इसे बहुत से देखे
1: अपने घर के आसपास, या आपके घर में ही ऐसी चीजें देखी आपने?
2: पढ़ता हूँ मैडम,
1: किताबों में ये सारी चीजें,
2: मतलब अखबार जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उनसे, चीजें फोन में जो मतलब न्यूज आती है उससे
1: आपको ये मोटिवेट मिला कि आपको दूसरों की मदद करनी है। और अभी स्टडी में कोई समस्या आती है तो उसको लेकर आप किससे बात करते हैं?
2: मैडम सबसे पहले तो मेरे साइंस, आप सोचेंगे साइंस लू की है मैंने, एक से टेंथ तक तो मेरे को साइंस मतलब हाई लेवल के ऊपर ही जाती थी, फिर मैं टेंथ में मेरी क्लास टीचर थी आरती मैडम, मतलब क्लास टीचर तो नहीं आरती मैडम, साइंस की टीचर थी मेरी, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे समझाया कि साइंस कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस पढ़ना आना चाहिए, एक बार जो बंदा पढ़ ले के वो हो सकता है। फिर मैडम ने मेरे को समझाया, फिर मैंने साइंस ली और फिर 11th में आके मुझे पल्ले मैडम का सपोर्ट मिला, उन्होंने मुझे ऐसा मतलब मोटिवेशन किया कि मुझे अब साइंस अच्छी लगने लगी है, बाकी की सब्जेक्ट पसंद आना बंद हो गई है।
1: फिर उन सब्जेक्ट्स का क्या हुआ?
2: कौन सी
1: बाकी जो सब्जेक्ट्स अब अच्छी मतलब नहीं लगती है?
2: जैसे कि साइंस तो मुझे अच्छी लगती है बायो, उसके लिए भी मैं और भी पढ़ लेता हूँ जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब अच्छी लगती है, पहले मुझे क्या साइंस बिल्कुल पसंद नहीं थी।
1: आपने कैसे अपने शेड्यूल बना रखा है कैसे पढ़ना है, क्योंकि साइंस के लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है यही सबसे सुना हुआ है, लेकिन हमको ये पता है कि सारी चीजें सारे सब्जेक्ट समान होती है, तो आपने कैसे अपनी पढ़ाई की योजना बना रखी है?
2: मैडम यूं है, बहुत बच्चे बनाते हैं टाइम टेबल बनाते फिर उसको फॉलो नहीं करते, ये मैं भी मानता हूँ कि ठीक है टाइम टेबल, रोज का टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, लेकिन मेरा एक फिक्स है कि रोज का रोज पढ़ लो इतना काफी होता है। मेरे टीचर भी यही बोलते हैं कि भाई एक दिन नहीं हुआ तो कोई टेंशन मत लो, दूसरे दिन करो, दूसरे दिन हुआ कोई टेंशन नहीं लो, तीसरे दिन करो, लेकिन करना बहुत जरूरी है, करना मतलब करना ही हूँ। जैसे कि मैं बताऊँ, मैं अभी फंक्शन था, बड़े बड़े फंक्शन में बोलने का कम होता हूँ, भाषण उन्हें देता हूँ, तो जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो भाषण के चक्कर में पढ़ाई को एक दिन छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन ये मेरा नहीं होता। जैसे कि भाषण है, चलो भाषण में 2-3 घंटे तैयारी कर ली, लेकिन उसके अलावा भी मेरी जो स्टडी होती है उसको मतलब रेगुलर रही हूँ, भले मेहनत थोड़ा टाइम कम मिलेगा लेकिन वो होगा, जरूर करेंगे।
1: को आप इस सारी चीजों के लिए मोटिवेट करते हो, सुनते हो आपकी बातें?
2: सुनते हैं वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं इस बारे में, और मैं भी उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे कमजोर होते हैं मुझसे, कुछ मुझसे ज्यादा अच्छे होते हैं, जो मुझसे ज्यादा अच्छे होते हैं मैं उनसे सीखता हूँ, और जो मुझसे कमजोर होते हैं उनको मैं सिखाता हूँ, इससे दोनों को फायदा होता है, उनका और मेरा दोनों का।
1: बिल्कुल, आपकी ये जो थॉट है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यही जो चीज है वो एक इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है, इसलिए आप इस मोटिवेशन के साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं, दूसरे जो बच्चे हैं, उनको भी बहुत अच्छे से आगे जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू
2: मैडम।
1: आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम हर्षित पटेल।
1: आप क्या करना चाहते हो बड़े होकर?
3: आई एम बिकम अ सिविल सर्विस ऑफिसर।
1: अच्छा, तो आप ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है, पढ़ाई में कैसे करना है, सारी चीजें आपको पता है?
3: मुझे 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यूपीएससी की तैयारी करनी।
1: तो इन सारी चीजों को लेकर आपके शिक्षक आपको कैसे गाइड करते हैं? आपने अपना सपना कभी अपने टीचर्स को बताया है कि आप क्या बनना चाहते हो?
3: हाँ, मैंने अपना सपना अपने क्लास टीचर पल्लवी मालवार मैम को बताया।
1: तो उन्होंने क्या कहा आपसे?
3: उन्होंने कहा कि हमें जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है।
1: तो उसके लिए आप क्या करते हैं?
3: उसके लिए मैं अपनी पढ़ाई को रेगुलर करता हूँ और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाता हूँ।
1: बनाते हो। तो अभी के समय में हम देख रहे हैं ना कि चारों तरफ ये बातें हैं कि युवाओं को संभाल के रखो, युवा नशे से दूर रहे, बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं। तो आप भी एक युवा हैं, तो इन सारी चीजों को आप कैसे बदलना चाहते हैं, क्या ऐसी चीजें आप करते हैं?
3: इन सभी चीजों को बदलने के लिए मैं सिविल सर्विस लाइन में जाना चाहता हूँ।
1: तो उससे क्या बदलाव आएगा?
3: इससे मैं एक अच्छे पद पर जाऊंगा और इन सभी चीजों को रोकने का निश्चय करूंगा।
1: कैसे करेंगे, क्या योजना बना रखी है आपने, मन में कुछ सोच रखा है कैसे क्या करोगे?
3: मैं सिविल सर्विस की लाइन में जाऊंगा और फिर युवाओं को जागरूक करूंगा कि ये सब चीजों से दूर रहे।
1: आपको लगता है ये सारी चीजें गलत है?
3: हाँ।
1: कैसे गलत है?
3: ये सभी चीजें युवाओं को नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन सभी चीजों से समाज में पिछड़ापन आता है।
1: अच्छा, तो आपने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा गुस्सा या ऐसी सारी चीजें कभी की है?
3: नहीं,
1: कभी कुछ भी नहीं किया, ना घर पे, ना स्कूल में, ना किसी फ्रेंड्स के साथ, कभी कुछ नहीं किया?
3: नहीं।
1: बहुत से लड़के तो कर देते हैं, आपने क्यों नहीं किया?
3: नहीं आता गुस्सा।
1: नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है कि आपको गुस्सा नहीं आता और आप इन सारी चीजों में बदलाव लाना चाहते हैं। तो आप अपनी जो चीजें हैं, भावनात्मक चीजें हैं, मानसिक तौर पर आप कभी किसी चीज को लेकर परेशान हैं, तो सबसे पहले आप किससे बात करते हैं?
3: मैं अपने परिवारजन से और गुरुजनों से बात करता हूँ।
1: परिवार में सबसे पहले कौन?
3: अपने माता पिता और अपने भाइयों से।
1: माता पिता में भी माँ से या पापा से?
3: माँ से।
1: माँ से, माँ से ही क्यों सबसे पहले बात करते हो?
3: क्योंकि वो स्ट्रिक्टली नहीं समझाते,
1: प्यार से समझाते,
3: प्यार से समझाते।
1: और पापा स्ट्रिक्ट समझाते हैं। पापा से कभी कभी कोई बात शेयर की है जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए उस बात को लेकर?
3: हाँ।
1: कौन सी बात?
3: 11th के रिजल्ट के बाद। 11th में मैंने पूरे साल पढ़ाई तो सही से की थी पर जैसा रिजल्ट आना चाहिए था वैसा रिजल्ट नहीं आया।
1: ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था?
3: कहीं ना कहीं मेरी निरंतरता, तब मैं कंसिस्टेंट नहीं था पढ़ाई को लेकर।
1: और अब?
3: अब मैं कंसिस्टेंट हूँ।
1: अब क्या करते हो, आपने क्या रूपरेखा बना रखी है आपकी स्टडी की?
3: मैं रूपरेखा नहीं बनाई, मैंने अपनी पढ़ाई टू डू लिस्ट के हिसाब से बनाता हूँ। मैं अपने डेली के टास्क बनाता हूँ जिसके हिसाब से मैं पढ़ाई करता हूँ।
1: कैसे बना रखे टास्क? मतलब आप जो ये कार्यक्रम बच्चे सुन रहे हैं वो आपसे मोटिवेट हो सकते हैं, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी आपने क्या बना रखा है ऐसा?
3: जैसे मैं डेली के, मतलब मेरे को इस चैप्टर का रिवाइज करना, फिजिक्स के चैप्टर का रिवाइज करना है, तो मैं एक टू डू लिस्ट तैयार करता हूँ जिसमें मुझे आज के 2 घंटे के लिए फिजिक्स पढ़नी है, तो मैं फिजिक्स का लिखता हूँ, केमिस्ट्री का लिखता हूँ और बायोलॉजी का लिखता हूँ, और उस हिसाब से मैं अपने दिन को शुरू करता हूँ।
1: फोन चलाते हो?
3: हाँ।
1: क्या क्या देखते हो फोन में?
3: फोन में मैं AI का इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ।
1: उसके अलावा?
3: एडिटिंग सीख रहा हूँ।
1: उसके अलावा कोई सोशल मीडिया या ये सारी चीजें ध्यान भटकाती है आपका?
3: नहीं,
1: नहीं लगता है। मोबाइल मतलब आपको ऐसा लगता है कि यूजफुल ही है?
3: हाँ।
1: थैंक यू।
3: थैंक यू।
4: साथियों, आज की बातचीत से हमें समझ में आ गया कि बच्चों को खुशहाल बचपन देने के लिए उनका साथ देना, उनकी बात सुनना और उनके सपनों का सम्मान करना जरूरी है। याद रखिए कि हर बच्चे को प्यार, भरोसे और आगे बढ़ने के अवसर की जरूरत होती है। इसी के साथ माता पिता उनकी भावनाओं को समझे, उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें कि किस तरीके से वो कल्पना करते हैं और किस तरीके से उन्हें मार्गदर्शन देना है। तो आशा करते हैं कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आप हमारे कार्यक्रम का पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारे पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM
1: लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है श्रोता साथियों उन बेटियों के नाम जो सिर्फ अपने सपनों को देखने का साहस ही नहीं करती बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते भी बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज का विषय है बेटियां और युवा नेतृत्व, बदलाव की नई पहचान को लेकर।
0: जी हाँ,
1: जब हम नेतृत्व की बात करते हैं कशिश, तो अक्सर हमारे मन में किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की तस्वीर आती है, लेकिन क्या नेतृत्व का मतलब केवल किसी पद पर होना है? बिल्कुल नहीं श्रोताओं, नेतृत्व का मतलब है सही बात के लिए आवाज उठाना, जिम्मेदारी लेना, दूसरों को साथ लेकर चलना और समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करना।
0: बिल्कुल,
1: और जब यही नेतृत्व हमारी बेटियां और युवा मिलकर करते हैं तो बदलाव की तस्वीर और भी मजबूत हो जाती है कशिश।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें?
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बेटियां और युवा नेतृत्व बदलाव की नई पहचान को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो जागृति जी, हम देखते हैं कि हर बेटी को अपने जीवन से जुड़े फैसलों में अपनी बात रखने के साथ साथ शिक्षा पाने, आगे बढ़ने और अपनी क्षमता के अनुसार सपने देखने का अधिकार होता है, क्योंकि बेटी केवल परिवार का हिस्सा नहीं, वह समाज के भविष्य की निर्माता भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: हम जानते हैं कि एक बेटी जब पढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, उसके ज्ञान का प्रभाव परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचता है। वहीं जब बेटी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है तो वह दूसरी बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, आज जरूरत सिर्फ ये कहने की नहीं है कि बेटियां आगे बढ़े, जरूरत है सोचने की कि हम बेटियों के आगे बढ़ने का रास्ता कितना आसान बना रहे हैं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर ये मान लिया जाता है कि नेतृत्व के लिए बहुत अधिक उम्र, अनुभव या कोई बड़ा पद जरूरी है, लेकिन असली नेतृत्व उम्र से नहीं श्रोताओं, सोच और जिम्मेदारी से पैदा होता है।
0: बिल्कुल।
1: एक युवा लड़की अगर अपने स्कूल में स्वच्छता अभियान शुरू करती है तो नेतृत्व है। अगर कोई बेटी अपने गाँव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है तो वो नेतृत्व है।
0: जी।
1: अगर कोई युवा लड़का अपनी बहन की शिक्षा को उतना ही महत्वपूर्ण मानता है जितना अपनी शिक्षा को, तो ये भी नेतृत्व है।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई युवा मिलकर गांव में बाल विवाह, बाल श्रम, नशे या डिजिटल दुरुपयोग जैसी समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलाता है तो भी ये नेतृत्व है। यानी कि श्रोताओं, नेतृत्व का मतलब हमेशा मंच पर खड़े होकर भाषण देना ही नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है कि जहां बदलाव की जरूरत दिखे वहां पहला सकारात्मक कदम उठाया जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, अब यही प्रश्न ये उठता है कि बेटियां क्यों बनती है नेतृत्व की मजबूत आवाज।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, हमारे समाज में बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, खेल, प्रशासन, सेना का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, तकनीक का हो या फिर सामाजिक सेवा का। हर जगह बेटियां अपनी पहचान बना रही है जागृति जी। लेकिन अभी भी कई जगह बेटियों को अपनी बात रखने, निर्णय लेने और आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कभी परिवार की सोच उन्हें रोकती है तो कभी समाज की अपेक्षाएं, तो कभी आर्थिक परिस्थितियां और कभी ये डर कि लोग क्या कहेंगे।
1: जी हाँ।
0: लेकिन बदलाव तभी आएगा जागृति जी, जब हम बेटियों को केवल सुरक्षा नहीं, अवसर भी देंगे। साथियों, बेटियों को यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम लड़की हो इसलिए ये मत करो, बल्कि उसे यह सुनने की जरूरत है कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि बेटियों के नेतृत्व की पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा केवल किताब पढ़ना या परीक्षा पास करना नहीं है। शिक्षा हमें सवाल पूछना सिखाती है, सही और गलत में अंतर समझना सिखाती है और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को पहचानना सिखाती है। एक शिक्षित बेटी अपने जीवन के फैसलों को बेहतर तरीके से समझ सकती है।
0: बिल्कुल।

0: आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के रास्ते तलाश सकती है और अपने परिवार तथा समुदाय में भी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए साथियों, बेटियों की शिक्षा को खर्च नहीं भविष्य में निवेश समझना होगा और युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास की बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करें।
1: बिल्कुल।
0: अगर किसी दोस्त की बहन पढ़ाई छोड़ रही है तो मजाक बनाने के बजाय उसके परिवार से बातचीत करने की कोशिश करें। अगर कोई लड़की अपने सपनों को लेकर असमंजस में है तो उसे कमजोर समझने के बजाय उसका आत्मविश्वास बढ़ाए, यही युवा नेतृत्व है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही अपनी बात रखने का साहस भी नेतृत्व की पहचान होती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर बात करें तो युवा साथियों, नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपनी बात स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखी जाए। कई बार लड़कियां अपनी बात इसलिए नहीं रख पाती जागृति जी, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में श्रोता साथियों, हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ बेटी सवाल भी पूछ सके, अपनी पसंद भी बता सके, अपनी परेशानियों को साझा भी कर सके और किसी निर्णय पर अपनी राय भी दे सके। और यहाँ भी हमारे युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि युवा अपने घर और समाज में ऐसी संस्कृति बना सकते हैं जागृति जी, जहाँ बेटियों की बात सुनी जाए।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि कहा भी गया है कि जिस समाज में बेटियों की आवाज़ सुनी जाती है, वहाँ बदलाव की आवाज़ और भी मजबूत होती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहुत ही अच्छी बातें चल रही है, आगे भी हम इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी बेटियां और युवा नेतृत्व बदलाव की नई पहचान को लेकर, जैसे कि बहुत सारी बातें की थी, यही जानते हैं युवा साथी बने केवल दर्शक नहीं।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि कशिश, आज का युवा केवल बदलाव देखने वाला नहीं बल्कि बदलाव करने वाला बन सकता है। हमारे आसपास बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं हैं, स्कूल छोड़ती बेटियां, डिजिटल दुनिया में असुरक्षा, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव, बाल विवाह जैसी सामाजिक चुनौतियाँ।
1: जी हाँ,
0: हर समस्या को सरकार या किसी संस्था के भरोसे छोड़ देना समाधान नहीं है। युवा अपने स्तर पर भी शुरुआत कर सकते हैं। 5 युवा मिलकर 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कुछ युवा गांव में जागरूकता बैठक कर सकते हैं। युवा सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी बालिकाओं की शिक्षा और समान अवसरों पर संवाद कर सकते हैं। छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। जी, जो छोटे छोटे कदम है कशिश, अगर ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे जो युवा साथी है वो केवल दर्शक नहीं बनेंगे बल्कि साथी भी बनेंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे युवाओं को ये भी समझना होगा कि नेतृत्व का मतलब अकेले आगे बढ़ना नहीं है बल्कि सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि युवाओं एक अच्छा नेता वह है जो सबसे आगे अकेला खड़ा हो।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि युवा साथियों, एक अच्छा नेता वह नहीं होता जो आगे अकेला खड़ा हो, अच्छा नेता वह है जो दूसरों को भी आगे आने का अवसर दे। बेटियों का नेतृत्व भी तभी मजबूत होगा जागृति जी, जब वे एक दूसरे के साथी बने। एक लड़की अगर किसी दूसरी लड़की को पढ़ाई में मदद करती है, उसे प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करती है या उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, तो वो उसके जीवन में एक सकारात्मक नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। युवाओं को भी प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग की भावना विकसित करनी होगी, क्योंकि बदलाव की दौड़ में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे आगे कैसे निकलूं, बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया से जुड़ी हुई है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के नए रास्ते दिए हैं। एक बेटी अपनी कहानी, अपनी कला, अपने विचार या अपने काम को दुनिया के सामने रख सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी भी जरूरी है। युवाओं के समझना होगा कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का माध्यम भी बन सकता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन हम देखते हैं कि ऑनलाइन किसी का मजाक उड़ाना, गलत जानकारी फैलाना या किसी की निष्ठा का सम्मान न करना नेतृत्व नहीं है। सच्चा डिजिटल नेतृत्व वही है जो तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान, सहयोग और सकारात्मक बदलाव के लिए करे।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में अगर बात करें गांव की बेटियों की, तो हमारे गांव और छोटे कस्बों में भी नेतृत्व की बहुत संभावनाएं होती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, गांव की बेटी अपने समुदाय में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संरक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों पर काम कर सकती है। कई बार हम दोस्तों नेतृत्व को बड़े शहरों और बड़े संस्थानों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली बदलाव तो वहीं से शुरू होता है जहां हम रहते हैं। जागृति जी, अगर एक बेटी अपने गांव की 5 लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है तो यह कोई छोटा काम नहीं होगा।
0: बिल्कुल,
1: अगर एक युवा अपने गांव के लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करता है तो ये भी एक नेतृत्व है। क्योंकि साथियों, बदलाव के लिए बड़े शहर की जरूरत नहीं होती, बड़ी सोच की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, इसी तरह परिवार की भी भूमिका होती है, यानी कि श्रोताओं, बेटियों के नेतृत्व को मजबूत बनाने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार अगर बेटी की बात सुनेगा, उसके सवालों का जवाब देगा, उसे निर्णय लेने का अवसर देगा और उसके शिक्षा को प्राथमिकता देगा तो बेटी का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: बेटे और बेटी के बीच अवसरों का अंतर कम करना जरूरी है। बेटे से अगर पूछा जाता है तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बेटी से भी यही सवाल पूछा जाना चाहिए। श्रोताओं, बेटी के सपनों को अगर परिवार गंभीरता से लेता है तो बेटी के सपनों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। श्रोताओं, इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि जहां बेटियां नेतृत्व करती है तो समाज को नई सोच मिलती है, वे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को अलग नजरिए से देख सकती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कशिश कि बेटियों का नेतृत्व केवल बेटियों के लिए नहीं है, ये पूरे समाज की प्रगति के लिए है। एक ऐसा समाज जहाँ लड़कियाँ और लड़के समान अवसरों के साथ आगे बढ़े, वहाँ प्रतिभा का नुकसान कम होता है और विकास की संभावनाएं बढ़ती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोताओं, बेटियों को आगे बढ़ाना किसी एक वर्ग का काम नहीं है, ये परिवार की जिम्मेदारी है, ये युवाओं की जिम्मेदारी है, ये समुदाय की जिम्मेदारी है, साथ ही ये हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में हमारे युवा साथियों को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने आसपास की बेटियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा हूँ, क्या मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, क्या मैं उनके सपनों का सम्मान करता हूँ, क्या मैं अपनी बहन, दोस्त या साथी को उसके फैसलों में प्रोत्साहित करता हूँ, इसी के साथ ही क्या मैं किसी गलत सामाजिक सोच को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेता हूँ क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है। अगर दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो चिंता मत कीजिए, बदलाव की शुरुआत आज से ही की जा सकती है। किसी एक बेटी की पढ़ाई में मदद आप करें, किसी एक लड़की का आत्मविश्वास आप बढ़ा कर देखें, किसी एक गलत सोच के सामने सवाल तो उठाइए युवा साथियों, और किसी एक युवा को सकारात्मक काम के लिए प्रेरित आप करके देखिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बदलाव हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं आता, कई बार बदलाव एक छोटी सी अच्छी पहल से भी शुरू हो जाता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि श्रोताओं, बेटी को आगे बढ़ाना केवल उसके भविष्य को बदलना नहीं है बल्कि पूरे समाज के भविष्य को मजबूत करना है। और युवा नेतृत्व का मतलब केवल खुद को आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का रास्ता देना है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोताओं, हर बेटी की आवाज सुनी जाए, हर बेटी की शिक्षा सुनिश्चित हो, हर बेटी के सपनों का सम्मान हो और हर युवा बदलाव की इस यात्रा में अपनी जिम्मेदारी निभाए।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे कि बेटियां जब नेतृत्व संभालती है तो बदलाव केवल दिखाई नहीं देता, समाज की सोच में महसूस होने लगता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी रही युवा नेतृत्व और हमारी बेटियों को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: और ये बातें जैसा कि आज पूरी भी हो चुकी है और समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा विषय रहने वाला है साथियों आपसे बातचीत का, तन के साथ मन की सेहत भी जरूरी है। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं अंजलि कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है श्रोताओं कि शरीर की तरह हमारे मन को भी देखभाल की जरूरत होती है। अगर शरीर में दर्द हो तो हम उसे पहचान लेते हैं, चोट लगे तो उसका इलाज करवाते हैं, बुखार आए तो आराम करते हैं, लेकिन जब मन थक जाता है, चिंता बढ़ जाती है, किसी बात का बोझ महसूस होता है या हम लगातार उदास रहने लगते हैं, तब क्या हम उतनी ही गंभीरता से अपने मन की सेहत पर ध्यान देते हैं?
0: बिल्कुल। जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी। आज हम जानेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कि तन की सेहत जरूरी है, लेकिन तन के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि स्वस्थ मन ही हमें सही सोचने, समझने, निर्णय लेने, रिश्ते निभाने और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है।
1: जी हाँ।
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए क्यों न कार्यक्रम का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें?
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं तन के साथ मन की सेहत भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि अंजलि, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है हम अपनी भावनाओं को समझ सके, तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सके, दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सके और रोजमर्रा के जीवन में अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। हर व्यक्ति के जीवन में कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता।
1: बिल्कुल।
0: कभी आत्मविश्वास बढ़ता है तो कभी मन में डर या चिंता पैदा होती है। इन भावनाओं का होना सामान्य है श्रोताओं, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल शाकृति जी, श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे एक छोटे से संवाद के माध्यम से कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति परेशान है और चुपचाप बैठा है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए? शायद हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। तो श्रोता साथियों, इसका जवाब है कि बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पूछना ही नहीं बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनना भी जरूरी है। क्योंकि जागृति जी, कई बार व्यक्ति को तुरंत सलाह नहीं चाहिए होती है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो बिना मजाक उड़ाए, बिना जज किए उसकी बात सुन सके।
0: बिल्कुल। तो हमारे शरीर और मन का रिश्ता इसी तरह बहुत गहरा है श्रोताओं। जब हम तनाव में होते हैं, नींद प्रभावित हो सकती है, भूख में बदलाव हो सकता है, शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है, सिर दर्द या बेचैनी जैसी परेशानियां भी महसूस हो सकती है। इस तरह जब शरीर लंबे समय तक थका हुआ रहता है अंजलि, पर्याप्त आराम हमें नहीं मिल पाता या हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित करके देखना सही नहीं है श्रोताओं। स्वास्थ्य का अर्थ है तन भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: आज की तेज जिंदगी में तनाव एक आम अनुभव बन गया है। बच्चों पर पढ़ाई का दबाव हो सकता है, युवाओं को पढ़ाई, रोजगार और भविष्य की चिंता हो सकती है, परिवार के बड़े सदस्यों को घर, काम और आर्थिक जिम्मेदारियों का तनाव हो सकता है। लेकिन तनाव महसूस करना कमजोरी नहीं है बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि जागृति जी, हम तनाव को पहचाने और स्वस्थ तरीके से उसका सामना करें। उसके लिए हम थोड़ा सा आराम करें, पर्याप्त तो नींद लें, अपने भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, प्रकृति के करीब समय बिताएं, अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधि करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि ये सभी स्वस्थ कदम हो सकते हैं जिससे हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेगा।
0: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है, यही अगर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें कि मन की बात मन में दबाकर न रखे श्रोताओं। साथियों, हमारे समाज में आज भी कई लोग अपनी परेशानी किसी से साझा करने में झिझकते हैं। कभी उन्हें लगता है अंजलि कि लोग क्या कहेंगे, कभी लगता है कि अपनी परेशानी बताना कमजोरी है। लेकिन साथियों, सच्चाई ये है कि अपनी भावनाओं के बारे में बात करना कमजोरी नहीं है बल्कि अपने मन की देखभाल करने का एक तरीका है। अगर किसी बात से मन परेशान है तो किसी भरोसेमंद परिवारजन, मित्र, शिक्षक या अन्य विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर सकते हैं। और यदि परेशानी लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगी तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेना भी बिल्कुल उचित कदम है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि परिवार केवल वो जगह नहीं जहां हम रहते हैं, परिवार तो वो स्थान है जहां हमें अपनापन और सुरक्षा का एहसास मिलता है। इसलिए घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी बात को कह सके। बच्चा अगर अपनी परेशानी बताए तो तुरंत डांटने के बजाय उसकी बात को आप जरूर सुने। युवा अगर अपने भविष्य को लेकर चिंतित है तो उसकी तुलना दूसरों से करने के बजाय उसका हौसला बढ़ाए। घर के बुजुर्ग अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो उनके साथ आप समय बिताएं। कभी कभी कुछ मिनट की बातचीत भी किसी के लिए बहुत मायने रखती है। एक सवाल पूछिए कि आप कैसे हैं और जवाब सुनने के लिए थोड़ा समय भी दीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आज हम कार्यक्रम में जान पा रहे हैं कि किस तरीके से तन के साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है और किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य अगर हमारा सही रहता है तो हमारा जो जीवन है उसमें कहीं तरीके की चीजों में बदलाव आता है।
0: बिल्कुल।
1: आशा करते हैं कि ये बातें श्रोता साथियों को पसंद आ रही होगी। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम श्रोता साथियों के साथ अवश्य करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ,

0: है तो हमारा आधे से ऊपर तनाव यूं ही खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, बच्चों और युवाओं के मन को समझना भी जरूरी है। कहना चाहेंगे कि बच्चों की मानसिक सेहत पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना हम उनकी पढ़ाई और शारीरिक स्वास्थ्य पर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी के सीखने की गति अलग हो सकती है, किसी की रुचि अलग हो सकती है, तो किसी की क्षमता अलग। इसलिए बच्चों में लगातार तुलना करने के बजाय उनकी खूबियों को पहचानना चाहिए। युवाओं के सामने आज शिक्षा, रोजगार, करियर, सामाजिक अपेक्षाएं और भविष्य को लेकर जागृति जी कई तरह की चुनौतियां हो सकती हैं। उन्हें केवल यह कहना कि मजबूत बनो पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि अगर कभी कोई मुश्किल लगे तो बात करने के लिए कोई आपके साथ है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गलत धारणाएं भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: कुछ लोग मानते हैं कि मानसिक परेशानी केवल कमजोर लोगों को होती है, तो यह सही नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन का सामान्य हिस्सा है और किसी भी व्यक्ति को कभी भी भावनात्मक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
1: जी हाँ।
0: दूसरा भ्रम ये है कि मानसिक परेशानी की बात करने से समस्या बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में जागृति जी, सुरक्षित और भरोसेमंद व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, अपनी भावनाओं को उन्हें बताते हैं और वो हमारी भावनाएं समझते हैं, हमें सहायता देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मजाक, ताने और भेदभाव के बजाय श्रोताओं समझ, संवेदनशील और सहयोग की जरूरत जरूर अपनाएं। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि मन को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है। हम छोटी छोटी अच्छी आदतों से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि सुबह कुछ समय खुली हवा में बिताना, नियमित शारीरिक गतिविधि करना, पर्याप्त नींद लेना, संतुलित भोजन करना, परिवार से बातचीत करना, अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधियां करना और दिन भर में कुछ समय स्क्रीन से दूर रहना। ये जो आदतें हैं अंजलि, स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि आप अपनी भावनाओं को पहचाने जरूर। कभी खुद से पूछे कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या कैसा महसूस कर रही हूँ। अगर जवाब अच्छा है तो उस खुशी को महसूस करें। अगर मन परेशान है तो खुद को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश करें कि परेशानी की वजह क्या है और मुझे किस तरह की सहायता की जरूरत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसमें समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि सच्चा स्वराज केवल अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब समुदाय का हर व्यक्ति एक दूसरे की चिंता करे। गांव में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अकेला है तो उससे बातचीत की जा सकती है। अगर कोई बच्चा लगातार परेशान दिखाई देता है तो परिवार और शिक्षक मिलकर उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस कर रहा है तो समुदाय उसके साथ समय बिता सकता है। क्योंकि श्रोता साथियों, एक स्वस्थ समुदाय वही है जहां लोग केवल एक दूसरे की जरूरतों को नहीं बल्कि एक दूसरे की भावना को भी समझते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि। तो साथियों, अब आपसे एक छोटी सी अपील है कि आज आप अपने घर में किसी एक व्यक्ति से जरूर पूछिए कि आप कैसे हैं।

0: तो आप ध्यान से सुनिएगा, शायद आपकी छोटी सी कोशिश किसी के दिन को बेहतर बना देगी। आप हमें ये बता भी सकते हैं कि आपके गांव या मोहल्ले में लोग मानसिक तनाव कम करने के लिए क्या करते हैं।
1: जी,
0: क्या परिवार में लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, क्या बुजुर्गों के साथ समय बिताया जाता है। आपके अनुभव और सुझाव हमारे लिए श्रोताओं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चा स्वराज केवल बाहर की आज़ादी नहीं है साथियों, ये अपने विचारों को समझने, अपनी भावनाओं को पहचानने और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनने की दिशा में भी एक नया कदम है। अंजलि, जब व्यक्ति अपने मन को समझता है और अपनी परेशानियों को स्वीकार करता है और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में संकोच नहीं करता तो भीतर से मजबूत बनता है। और जब मजबूत व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं, मजबूत परिवार मिलकर समुदाय बनाते हैं और मजबूत समुदाय मिलकर समाज को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, ये परिवार का विषय है, ये समुदाय का विषय है और ये समाज का विषय है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज की हमारी बात को एक छोटी सी पंक्ति में हम याद रख सकते हैं, जैसे कि शरीर की थकान आराम मांगती है और मन की थकान अपनापन।
0: बिल्कुल,
1: ये अपने शरीर का ख्याल रखें लेकिन अपने मन की आवाज को भी सुने। अपने परिवार के लोगों से बात करें, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, किसी की परेशानी का मजाक न बनाएं, जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच न करें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार बनता है, स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समुदाय बनता है और स्वस्थ समुदाय से मजबूत समाज बनता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हम अपने मन में ये चीजें ठान सकते हैं कि न मन की परेशानी को नजरअंदाज करेंगे, न किसी की परेशानी का मजाक बनाएंगे, बात करेंगे, सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर सहयोग का हाथ भी बढ़ाएंगे। यही संवेदनशीलता है, यही जिम्मेदारी है और यही सच्चे स्वराज की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।
0: बिल्कुल, तो साथियों फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपने तन का भी ख्याल रखें और अपने मन का भी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय, यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम घूमर हमारी अमर हित बुन ने आपनी बुन मनीषा ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। होवे बहन बोनो आप सब हमले रिया हो आप सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी स्वागत करे हाँ हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे बहन बोनो लेने हाजिर थी गये हाँ कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय में हाथे। तो मनीषा बोन आज अपने कार्यक्रम में बहन बोनो थे की बातचीत विषय है कि आपणे सूर्य ने खाली विदास नथी करवो बल्कि विरासत भी आलवी है।
0: हवे
1: केम के आपणे देखो हो के आपणे समाज में बेटियों ने जन्म था तई वगत तक की लेनी इनी विदाई उती घणा का नी रस्म थाए है। सूर्य ने सित्र खरीदवो, गहना बनाबो, शादी ने हित सामान खरीदवो, घणा का नी चीजे आपणे सम्मान पूर्वक ने घणी भावुकता तक की आपणी सूर्य ने आपणे घर तक की विदा करा हो। पर आज ना टाइम में थोड़ी आ चीजें ने थोड़ा जो सवाल है ये बदल के हैं।
0: होवे
1: कि आपड़े आपड़े बेटी ने केवल विदा नहीं करो बल्कि इन्हें आपड़ी जिम्मेदारी ने भी हम सो इन्हें साथे या पास इन्हें एवी विरासत आलो जिन तकी विदा थावा बाद भी ई आपड़ा घर में आत्मविश्वास ने सम्मान ने हाथे आपड़ू जो जीवन है ई जीवी सके।
0: होवे
1: मतलब मनीषा बुन केवल जमीन जायदाद गहनो या घर नो हिस्सो नहीं बल्कि सूर्य ने एवी शिक्षा आलो संस्कार आलो या अपना फैसला लेवानी हमस आलो आर्थिक जानकारी आलो अपना अधिकार नी जानकारी आलो या मुश्किल टाइम में भी अपना साहस ने हाथे उभी रहवानी विरासत भी अपने बुना ने आलवी है। ताजे कार्यक्रम घूमर में अपनी सोच माते से अपने बात करेंगा कि सूर्य ने खाली विदास नहीं करवो बल्कि विरासत में घना कनी चीजें अपने अपने सूर्य ने अपने ने आलवो होगा।
0: हो व्यंजलि बोन तो अना विषय माते कार्यक्रम ने माध्यम कती अपने भाई बुने कती घना अक्कानी बातें रहेंगा पन कार्यक्रम की शुरुआत में हमला गीत ने मोरे कर अपनी बातें।
1: हो तो भाई बुनो आप हमारे रेजू आप रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हंगरा ने हाथे मली ने जावु है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेरणा कहां से मिलती है। जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है और इस यात्रा में कभी हमें असफलता मिलती है तो कभी हमें सफलता मिलती है। कभी हमारे पास खुशियां होती है साथियों, तो कभी हम चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे समय में जो शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, यानी कि जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है और हमारे सपनों को पंख देती है, उसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार करती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है और प्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ आप सभी को मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ रहा है

हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जैसे कि साथियों, गीत से पहले मेरी आपसे कुछ बातें रही थी कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है। जहाँ हमें सफलता मिलती है तो वहाँ हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास ढेर सारी खुशियाँ होती हैं, तो कभी दुख होता है और कभी चुनौतियों का सामना हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। ऐसे में श्रोता साथियों, प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जो हमें गिर कर उठना सिखाती है। और दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया भी था कि कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि क्या यह किसी पुस्तक में मिलती है या फिर किसी व्यक्ति से मिलती है, या फिर ये हमारे भीतर ही छिपी हुई है जिसे हम जान नहीं पाते हैं। अगर बताऊं श्रोता साथियों, तो वास्तव में प्रेरणा का कोई एक स्रोत नहीं होता। ये जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हमारे अपने विचारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता दोस्तों केवल उसे पहचानने की होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए मन में जागृत होने वाली सकारात्मक भावना। दोस्तों, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं और जब हमारे भीतर कुछ नया करने की इच्छा पैदा होती है, तो हम देखते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम कठिनाइयों से हार नहीं मानते साथियों, तब प्रेरणा हमारे साथ होती है। यानी कि प्रेरणा केवल बड़े कार्यों के लिए नहीं होती, जैसे कि एक छात्र को पढ़ाई के लिए, एक किसान को खेती के लिए, एक खिलाड़ी को अभ्यास के लिए साथियों, और एक कलाकार को सृजन के लिए, वहीं एक सामान्य व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारे अपने सपने। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सपने तो होते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक या उद्यमी बनना चाहते हैं। दोस्तों, यही सपने जो होते हैं वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखता है ना साथियों, तब हमारे भीतर उन्हें पूरा करने की लगन भी पैदा हो जाती है। सपने हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बताया जाए तो सपनों के बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपने केवल सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए भी देखने चाहिए। वह सपने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं। तो ये तो श्रोता साथियों, हम जान पाए हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सपने होते हैं। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही हमारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि प्रेरणा आखिर हमें मिलती कहाँ से है, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि प्रेरणा प्राप्त करने का सबसे जरूरी माध्यम है सपने, और सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखते हैं, और उन्हीं सपनों को पूरा करने की लगन हमारे अंदर पैदा होती है। यही दोस्तों, अगर बात करूँ परिवार से मिलने वाली प्रेरणा की, तो हमारे जीवन की पहली प्रेरणा अक्सर हमारे परिवार से ही हमें मिलती है। माता पिता का संघर्ष, उनका परिश्रम और उनका त्याग हमें श्रोता साथियों बहुत कुछ सिखाता है। देखते हैं कि एक पिता जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वह अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वहीं एक माँ जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालती है, श्रोता साथियों वह धैर्य, प्रेम और समर्पण की मिसाल बन जाती है। वहीं दादा दादी और नाना नानी के अनुभव भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष और उनके जीवन के अनुभव हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों, कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में हमें पहली प्रेरणा हमारे परिवार से मिलती है। यही अगर महान व्यक्तियों के जीवन की प्रेरणा के बारे में जाने, तो इतिहास और वर्तमान समय में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी श्रोता साथियों, तब हमें ये समझ आता है कि सफलता आसान नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं होती। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम होता है, अनुशासन होता है, धैर्य होता है और संघर्ष छिपा हुआ होता है। दोस्तों, उनके जीवन की कहानियां हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। प्रकृति भी श्रोता साथियों हमें इस तरीके से ही प्रेरणा देती है, क्योंकि प्रकृति को हम एक महान शिक्षक मानते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का हर तत्व हमें कोई ना कोई नया संदेश देता है। जैसे कि उगता हुआ सूर्य हमें हर दिन नई शुरुआत का संदेश देता है, वहीं बहती हुई नदी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। दोस्तों, प्रकृति के जो विशाल वृक्ष होते हैं, वे हमें धैर्य और मजबूती का महत्व समझाते हैं, और जो छोटे छोटे बीज हैं, वह हमें बताते हैं कि बड़े परिवर्तन छोटी शुरुआत से ही होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रकृति का अवलोकन करने वाला व्यक्ति जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लग जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेरणा केवल सफलता से ही मिलेगी, जबकि दोस्तों वास्तविकता ये है कि कई बार सबसे बड़ी प्रेरणा असफलताओं से ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, तब वह पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। साथियों, असफलता हमें हमारी कमियों को पहचानने का अवसर देती है, क्योंकि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा साथियों, सफलता का आनंद भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की आवश्यकता है हमें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि हमारे पास ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कोई किसान दिन भर मेहनत करके, त्याग करके सफलता प्राप्त करता है, कोई छात्र कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करता है, वहीं कोई महिला आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई पहचान बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही वास्तविक कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रेरणा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें किसी एक स्थान पर मिल जाए। ये तो श्रोता साथियों हमारे सपनों में, हमारे परिवार में, प्रकृति में, महान व्यक्तियों के जीवन में और सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़ने में हमें मिलती है। आवश्यकता केवल अपनी आंखें, मन और विचार खुले रखने की है। दोस्तों, जब व्यक्ति प्रेरणा के इन स्रोतों को पहचान लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने का साहस देती है। साथियों, इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, अपने जीवन में प्रेरणा खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अपने सपनों को पहचानिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने आसपास की सकारात्मक बातों से सीखिए साथियों, और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प ले लीजिए। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से भरी जाती है। यदि आपके भीतर भी श्रोता साथियों विश्वास और प्रेरणा है, तो आपके सपनों का आकाश असीमित होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, और बातें भी मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं। तो विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 3270001। और अधिक

जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक प्रेरणादायक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करूं, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
3: ओवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बना वंगा।
2: होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नू असली राज।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि मन की परेशानी छुपाए नहीं, परिवार से खुलकर बात करना क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हम सभी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, परिवार के सदस्यों की खुशी का ध्यान रखते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और मुश्किल समय में उनका साथ भी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा अपना मन परेशान होता है, जब किसी की बात का दुख होता है, जब भविष्य की चिंता सताती है या जब हम किसी समस्या से घिर जाते हैं, तो मनीषा हम अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं हैं।
0: जी हाँ,
1: हम सोचते हैं कि अपनी परेशानी बताने से घर वाले चिंतित होंगे, कोई हमारी बात नहीं समझेगा, कहीं हमारा मजाक तो नहीं उड़ेगा या फिर हमारी परेशानी को छोटी बात समझकर टाल तो न दिया जाए। इसी डर से हम अपने मन की बात जो है वो मन में दबा कर ही रखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह शरीर में दर्द होने पर हम किसी अपने को बताते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से बात करते हैं, उसी तरह मन में होने वाली जो परेशानी है वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन की बात दबा कर रखने से समस्या हमेशा खत्म नहीं होती, कई बार वो हमारे मन में बार बार घूमती रहती है।
0: जी बिल्कुल।
1: और हमारी नींद, व्यवहार, काम करने की क्षमता, परिवार के साथ हमारे संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि मन की परेशानी परिवार से छुपाना क्यों नहीं चाहिए, खुलकर बात करने से क्या लाभ मिल सकते हैं और घर के सदस्यों को एक दूसरे की बात किस तरह सुननी चाहिए। तो बातें कार्यक्रम में मनीषा हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मन की परेशानी छुपाए नहीं, परिवार से खुलकर बात करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। जी हाँ श्रोता साथियों, हम सभी के जीवन में खुशी और दुख दोनों आते हैं। साथ ही हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है साथियों, जब हमारा मन है वो परेशान रहता है।
1: बिल्कुल,
0: कभी काम की चिंता होती है, कभी पैसों की परेशानी होती है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता होती है, तो कभी रिश्तों में आई दूरी अंदर ही अंदर हमें परेशान करती है। कई बार अंजलि जी, हम बाहर से तो हंसते हुए दिखाई देते हैं, लोगों से सामान्य तरीके से बातें करते हैं, लेकिन श्रोता साथियों हमारे मन में सारी बातें चलती रहती हैं। ऐसे समय में हम अपनी परेशानी किसी को बताने के बजाय अपने मन में दबा कर रखते हैं। हमें लगता है श्रोता साथियों की अपनी बात किसी को बताएंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा और परिवार के लोग बात सुनकर कहीं परेशान न हो जाए, ये सारी बातें सोचकर हम अपने मन की बात किसी को बताते ही नहीं हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, बहुत सी बार मन की परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप में सामने आ सकती है। किसी को घर की आर्थिक स्थिति की चिंता होती है, किसी को बच्चों की पढ़ाई की, किसी को नौकरी की या खेती में होने वाले नुकसान की चिंता सताती है, किसी व्यक्ति को अपने रिश्तों में आई दूरी दुखी करती है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान रहता है।
0: बिल्कुल,
1: कई बार घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े, जिम्मेदारियां का जो बोझ है वो बढ़ता है, दूसरों से तुलना, किसी अपने का व्यवहार जो है वो किसी को बुरा लग जाता है, किसी अपने की जो बात है वह ना सुनी जाने का दुख भी मन को परेशान करता है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे गांवों में भी बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। महिलाएं घर और बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी थकान और दुख को छुपा लेती है। पुरुष परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण अपनी चिंता किसी को नहीं बताते, युवा अपने भविष्य और रोजगार को लेकर परेशान रहते हैं, जबकि बच्चे पढ़ाई, परीक्षा, दोस्तों या शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को मन में दबाए रखते हैं।
0: जी हाँ,
1: हर व्यक्ति की परेशानी अलग हो सकती है, लेकिन एक बात सब में समान है, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसे समझे और जरूरत पड़ने पर उसका साथ दे। इसलिए समझना जरूरी है कि परेशान होना कमजोरी नहीं, जीवन में मुश्किल समय में आना जो है वो सामान्य बात है।
0: जी
1: अपनी परेशानी को पहचानना और उसके समाधान के लिए किसी से बात करना समझदारी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर इंसान के मन में कुछ अनकहीं बातें होती हैं। इंसान का जीवन श्रोता साथियों केवल खुशी और हंसी से नहीं चलता है, जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो कभी मुश्किल समय भी आता है। कभी हमारी मेहनत सफल होती है तो कभी श्रोता साथियों बहुत कोशिश करने के बाद भी अचानक हमें परिणाम नहीं मिलते हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा में कितने अंक आएंगे उसकी चिंता रहती है, एक किसान को फसल खराब होने की चिंता रहती है, या बारिश समय पर नहीं आने की परेशानी रहती है। परिवार चलाने वाले व्यक्ति को अपने घर के खर्चों और जिम्मेदारियों की चिंता होती है, किसी महिला को घर के काम के बीच जो संभालना होता है उसकी परेशानी रहती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे घर के बुजुर्गों भी कभी कभी यह लगता है कि परिवार के लोग कैसे संभालेंगे और आगे का क्या होगा, ये सोचकर भी उन्हें परेशानी रहती है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं। अगर हम उन परेशानियों को अपने घर के साथ या किसी प्रिय व्यक्ति से साथ साझा करते हैं तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारे मन का जो दुख है और जो परेशानी है वो थोड़ी हल्की हो सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, परिवार हमारे जीवन का वह हिस्सा है जहाँ से हमें भावनात्मक सहारा मिल सकता है। परिवार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या दूसरे भरोसेमंद सदस्य हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें अपने परेशानी के बारे में बताएं। जब हम अपनी बात किसी को नहीं बताते तो सामने वाला व्यक्ति कई बार हमारी परेशानी को समझ ही नहीं पाता, उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है, जबकि हम अंदर ही अंदर किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, मान लीजिए कि किसी महिला को घर के काम, बच्चों की देखभाल और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण बहुत थकान महसूस हो रही है, लेकिन वह अपने परिवार से कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे उसके मन में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और छोटी छोटी बातों पर नाराजगी होने लगती है। परिवार के दूसरे सदस्यों को लगता है कि वह बिना किसी कारण गुस्सा कर रही है। यदि वह महिला शांतिपूर्वक अपने परिवार को बताती कि उसे आराम की जरूरत है और अपने घर के कामों में सहयोग चाहिए, तो संभव है कि परिवार के सदस्य उसकी स्थिति समझ पाते और जिम्मेदारी बांट लेते। इस उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि अपनी परेशानी बताने से दूसरे व्यक्ति को हमारी स्थिति समझने का अवसर मिलता है, क्योंकि हर हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अपनी बात कहने से समाधान की दिशा में पहला कदम जरूर उठाया जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से मन की परेशानी छुपाए नहीं, बल्कि श्रोता साथियों परिवार से खुलकर बात करने से हमारा दुख है और हमारी परेशानियां हैं वो किस प्रकार ठीक हो सकती है, इस विषय को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं। तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना अंजलि जी, श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में मनीषा हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हमें हमारे मन की परेशानी को घर परिवार के सदस्यों से खुलकर साझा करने की जरूरत है, और किस तरीके से जब हम मन की बात किसी को बताते हैं तो हमारा जो तनाव है वो कम होता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जब हमारे मन में कोई चिंता लगातार रहती है तो हम कई बार उसी

0: बात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है और हम उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे समय में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मददगार हो सकता है, क्योंकि जब हम अपनी परेशानी शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को समझने और समस्या को दूसरे नजरे से देखने का अवसर मिलता है। मान लीजिए कि किसी युवक को नौकरी नहीं मिल रही, वह कई दिनों से परेशान है और उसे लगता है कि वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, तो वह अपनी परेशानी किसी को बताने के बजाय अकेले बैठकर चिंता कर रहा रहता है। लेकिन जब वह अपने माता पिता, भाई बहन या किसी समझदार व्यक्ति से बात करता है तो उसे नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं। कोई उसे नौकरी के अवसरों के बारे में बता सकता है, कोई कौशल सीखने की सलाह दे सकता है और कोई उसे मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस तरह श्रोता साथियों, बातचीत से व्यक्ति को भावनात्मक सहारा मिल सकता है और समस्या से निपटने के लिए नए उपाय भी मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि केवल बात करने से हर परेशानी तुरंत दूर नहीं होती, लेकिन मन की बात कहने से परेशानी को अकेले सहने का बोझ जो है वो कम हो सकता है और आगे का रास्ता समझने में भी मदद मिल पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो श्रोता साथियों, अब सवाल यह उठता है कि जब मन की बात बताने से हमारे मन को राहत मिल सकती है तो लोग अपनी परेशानी छुपाते क्यों हैं?
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है डर। व्यक्ति को डर लगता है कि अगर उसने अपनी परेशानी बताई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। अंजलि जी, दूसरे कारण की बात करें तो हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी परेशानी बता दी तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार के लोग हैं वो भी चिंता करने लगेंगे। यहीं अगर तीसरे कारण की बात करें श्रोता साथियों, तो तीसरा कारण है श्रोता साथियों, कमजोरी। हम समझते हैं कि अगर हमने परेशानी बता दी तो हमारी कमजोरी, लोग ही इसे हमारी कमजोरी समझने लगेंगे, हमारे दुख को समझेंगे नहीं और इस कारण से भी लोग हैं वो बता नहीं पाते हैं। चौथा कारण है श्रोता साथियों, पहले के खराब अनुभव। यदि किसी व्यक्ति ने पहले किसी से परेशानी साझा की है और किसी व्यक्ति ने उसकी परेशानी को नहीं समझा है और उसका मजाक उड़ाया है तो उसे अक्सर लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा तो फिर से मेरे साथ वही होगा। तो इस कारण से अंजलि जी, हम देखते हैं कि कई बार लोग ही वो अपनी परेशानी नहीं बताते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, अच्छा स्वास्थ्य केवल शरीर के स्वस्थ होने का नाम नहीं है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम लगातार चिंता, दुख या तनाव में रहते हैं तो उसका असर हमारी दिनचर्या पर भी पड़ सकता है। कुछ लोगों को नींद आने में परेशानी होती है, कुछ की भूख प्रभावित होती है तो कुछ लोगों का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी व्यक्ति दूसरों से मिलना जुलना भी कम कर देता है। ऐसी स्थिति में परिवार का सहयोग बहुत मायने रखता है। परिवार का सहयोग केवल आर्थिक मदद करना या जरूरत का सामान उपलब्ध कराना नहीं है। किसी परेशानी में व्यक्ति के पास बैठना, उसकी बात ध्यान से सुनना, उसे समय देना और बिना दोष लगाए उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना भी सहयोग है। कई बार परेशान व्यक्ति को तुरंत सलाह की जरूरत नहीं होती, वह चाहता है श्रोता साथियों कि कोई उसकी बात पूरी सुने और उसकी भावनाओं को समझे। इसलिए यदि घर का कोई सदस्य आपसे कहता है कि वह परेशान है तो उसे यह कहकर चुप न कराएं कि इसमें परेशान होने जैसे कोई बात नहीं है। हो सकता है कि जिस बात को आप छोटी समझ रहे हो वह उसके लिए बहुत कठिन हो। उसकी बात को महत्व दीजिए, उससे पूछिए कि उसे किस तरह की मदद चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसके साथ किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ या परामर्शदाता से संपर्क करने में सहयोग कीजिए। याद रखिए श्रोता साथियों कि परिवार का संवेदनशील व्यवहार व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि साथियों, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बात को अपने मन में दबाकर नहीं रखना है। इससे अंजलि जी, हम देखते हैं कि समस्या खत्म नहीं होती। साथियों, कई बार बात हमारे मन में रखने से गलत फहमियां हैं वो बढ़ सकती हैं और हमारे मन पे जो बोझ है वो भी बढ़ सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, जरूरत है कि हम अपने परिवार के साथ ऐसा माहौल बनाएं जहां हम अपनी हर समस्याओं को बिना डरे उन्हें बता सके। अंजलि जी, परिवार हमारे जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, केवल एक ही घर में रहने से परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताएंगे तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारी बातें हैं वो हम साझा नहीं कर पाएंगे। साथ रहते हुए हुए श्रोता साथियों, कई बार हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं, कोई काम पर चला जाता है, बच्चे हैं वो पढ़ने चले जाते हैं, बुजुर्ग हैं वो घर पे अकेला महसूस करते हैं। तो ऐसे में अंजलि जी हम देखते हैं कि हम हमारी समस्या है वो साझा नहीं कर पाते। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाना है जिससे कि हम और हमारे घर के जो सदस्य हैं वो अपनी परेशानियों को साझा कर सकें।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि परिवार में खुलकर बातचीत तभी संभव है जब घर के सभी सदस्यों को यह भरोसा हो कि उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमें अपने व्यवहार में कुछ जरूरी बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले परिवार के सदस्यों के लिए थोड़ा समय निकालिए। रोजमर्रा के कामों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे से ठीक से बात करने का अवसर ही नहीं मिलता। यदि दिन में कुछ समय साथ बैठकर बातचीत की जाए तो घर के सदस्यों की परेशानियों को समझना आसान हो सकता है। दूसरी बात, किसी की बात बीच में काटने से बचिए। जब कोई अपनी समस्या बता रहा है तो पहले उसकी पूरी बात सुनिए। बिना पूरी बात जाने फैसला सुनना या उसे गलत ठहराना बातचीत को कठिन बना सकता है। तीसरी बात, अपनी भावनाएं स्पष्ट शब्दों में बताइए और यदि आपको किसी बात से परेशानी हुई है तो गुस्से में चिल्लाने के बजाय शांत होकर कहिए कि उस व्यवहार से आपको कैसा महसूस हुआ। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि जब मेरी बात पूरी नहीं सुनी जाती तो मुझे दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि हम बैठकर इस विषय पर शांति से बात करें। इस तरह बातचीत करने से सामने वाले को अपनी भावनाएं समझने का अवसर मिलता है। चौथी बात है श्रोता साथियों कि परिवार की निजी परेशानियों का मजाक न बनाएं और न ही उसे दूसरे के सामने बिना अनुमति के बताएं। भरोसा बनाए रखने के लिए एक दूसरे की निष्ठा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। पांचवी बात है कि बच्चों को भी अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। यदि बच्चा किसी गलती या परेशानी के बारे में बताता है तो पहले उसकी बात समझिए। हर बार डांटने या सजा देने के डर से बच्चा अपनी समस्या छुपाना सीख सकता है। इसलिए परिवार में ऐसा माहौल बनाएं जहां हर सदस्य को यह भरोसा हो कि वह अपनी परेशानी वहां पर खुलकर कह सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से दिन भर बातें करते रहते हैं। घर में क्या बना है, बाजार से क्या लाना है, बच्चों की फीस कब जमा करनी है, बिजली का बिल कितना आया है, इन सब पर बातचीत होती है। लेकिन श्रोता साथियों, जब बात मन की परेशानी बताने की आती है तो हम सभी चुप हो जाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि यदि परिवार में रोजमर्रा के कामों को लेकर हम बात कर रहे हैं तो अपने मन की परेशानी को हम क्यों नहीं बता सकते। यदि एक बच्चा पढ़ाई को लेकर परेशान है तो उसे डांटने के बजाय उसकी परेशानी को समझिए और कोशिश करिए कि उसकी आप मदद कर सके। यदि घर का कोई सदस्य आर्थिक चिंता में है तो उसकी बात सुने और मिलकर रास्ता निकालने का प्रयास करें। यदि कोई बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसके साथ बैठकर बातचीत करना भी श्रोता साथियों हमारे लिए जरूरी हो सकता है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे मन की परेशानी छुपाए नहीं, परिवार से खुलकर बात करना क्यों जरूरी है। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि युवाओं की परेशानियों को समझना भी उतना ही जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज के युवा अनेक प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की तलाश, आर्थिक स्वतंत्रता, करियर का चुनाव, सामाजिक अपेक्षाएं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तुलना जैसी परिस्थितियां हैं वो उन पर दबाव डाल रही हैं। कई बार श्रोता साथियों, युवा अपने परिवार में अपनी परेशानी इसलिए नहीं बताती क्योंकि उन्हें लगता है कि परिवार उनकी बात को नहीं समझेगा। वे सोच सकते हैं श्रोता साथियों कि यदि उन्होंने अपनी असफलता बताई तो उन्हें सुनना पड़ेगा कि घर वाले उनकी तुलना करेंगे, दूसरों को ये बोलेंगे कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों, परिवार को युवाओं के साथ मित्रवत और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उनकी बातों को केवल उम्र या अनुभव के आधार पर हमें नहीं देखना है। यदि कोई युवा नौकरी में नहीं कर पा रहा है तो उसको केवल मेहनत के बजाय उसे वास्तविक कठिनाइयां हुई उन्हें समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। यदि वो करियर को लेकर उलझन में है तो उसकी परेशानियां, उसकी रुचियां, उसकी योग्यता के अनुसार हमें जो करियर है उसे चुनाव में हमें मदद करनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, महिलाओं और पुरुषों को अपनी परेशानी बताना क्यों जरूरी है इसको लेकर बात करें तो हमारे समाज में कई बार महिलाओं और पुरुषों से जुड़ी ऐसी अपेक्षाएं बनाई जाती हैं जिसके कारण वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच करते हैं। महिलाओं को अक्सर सिखाया जाता है कि घर की शांति के लिए उन्हें हर बात सहन करनी चाहिए। वे अपनी थकान, दुख और इच्छाओं को पीछे रखकर परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही हैं। लेकिन लगातार अपनी जरूरतों की अनदेखी करना उनके लिए कठिन हो सकता है। उन्हें भी आराम, सम्मान, सहयोग और अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी महिला को जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो रहा है तो उसे परिवार के साथ इस बारे में बातचीत करनी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: घर के काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होते, परिवार के सभी सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। इसी तरह पुरुषों पर भी परिवार चलाने और कमाने और सभी की जरूरतों को पूरा करने का दबाव हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: कई पुरुष यह सोचकर अपनी चिंता नहीं बताते कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन साथियों, दुख व्यक्त करना या मदद मांगना कमजोरी नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी परेशान हो सकता है, उसे भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने और सहारा पाने का अधिकार है। पति पत्नी के बीच खुली बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो उसे लंबे समय तक दबाकर रखने की बजाय उचित समय पर शांति से बातचीत करनी चाहिए। एक दूसरे को दोष देने के बजाय समस्या पर मिलकर विचार करना चाहिए। इससे आपसी समझ बढ़ सकती है और परिवार में सहयोग का वातावरण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, श्रोता साथियों, अक्सर हमारे परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की समस्याओं पर चर्चा होती है, लेकिन माता पिता की भावनाओं पर हम ध्यान नहीं देते। माता पिता भी इंसान ही, उन्हें भी आर्थिक दबाव, काम की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता और रिश्तों से जुड़ी परेशानियां वो हो सकती हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के सामने अपनी परेशानी है वो जाहिर नहीं करते। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बच्चे हैं वो चिंतित हो जाएंगे, उनकी नजर में उनका सम्मान है वो बना रहे, इसलिए वो अपनी परेशानियां नहीं बताते। लेकिन श्रोता साथियों, परिवार में भावनात्मक सहयोग का अर्थ यह नहीं है कि केवल माता पिता अपने बच्चों की परेशानियां हैं वो समझे। बच्चों की अपनी उम्र और समझ के अनुसार अपने माता पिता की बात समझनी चाहिए। यदि श्रोता साथियों, माता पिता काम में थके हुए घर लौटते हैं तो परिवार के सदस्य हैं वो उनके साथ समय बिता सकते हैं, उनकी बातें जान सकते हैं और जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उनमें सहयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ श्रोता साथियों यह नहीं है कि बच्चों पर बड़ों की समस्याओं का जो दबाव है वो डाला जाए, बल्कि परिवार के सदस्य हैं वो ये एहसास कर सकते हैं कि उनकी भी भावना है, उनकी भी मदद की जरूरत है और उनकी भी बातों को हमें समझना चाहिए।
1: बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को क्या परेशानी होगी, उन्हें तो बस पढ़ना, खेलना और खुश रहना है। लेकिन बच्चों के मन में भी कई तरह की चिंताएं हो सकती है। परीक्षा में कम अंक आने का डर, दोस्तों से झगड़ा, किसी शिक्षक की बात से दुखी होना, दूसरे बच्चों से तुलना या घर में लगातार होने वाले झगड़े बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। यदि बच्चा अचानक चुप रहने लगे, पहले की पसंदीदा गतिविधियों से रुचि कम दिखाए, स्कूल जाने से बचे या अपने मन की बात कहने से डरे, तो उसके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। ये बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, इसलिए बच्चे से प्यार से बात करना और जरूरत पड़ने पर उचित मदद लेना जरूरी है। माता पिता को बच्चों से पूछना चाहिए कि उनका दिन कैसा रहा, उन्हें किस बात से खुशी मिलती है, क्या कोई ऐसी बात उन्हें दुख पहुंचाती है। बच्चों को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसकी भावनाओं को यह कहकर खारिज न करें श्रोता साथियों कि वह अभी छोटा है या कुछ नहीं समझता। जब बच्चों को परिवार में सुरक्षित माहौल मिलता है तो उनके लिए अपनी समस्या बताना आसान हो सकता है। जब वह जान पाता है कि गलती होने पर भी वह अपने माता पिता से मदद मांग सकता है।
0: जी हाँ,
1: बचपन से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आदत विकसित करना जीवन भर का काम हो सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि परिवार में बातचीत का अच्छा वातावरण बनाने के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि कोई समस्या है तो हमें बता दूं। इसके लिए श्रोता साथियों, परिवार के सदस्यों को अपने व्यवहार के अनुसार बदलाव लाना चाहिए। सबसे पहले श्रोता साथियों, हमें एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनने की आदत विकसित करनी होगी। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा हो तो बीच में रोक कर अपनी राय तुरंत देने के बजाय और उसकी तुरंत हमें समाधान देने के बजाय उसकी बात वो पूरी तरह से हमें सुननी है। दूसरी बात है श्रोता साथियों, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी परेशानी साझा करता है और जवाब में उसे डांट, ताना या अपमान मिलता है अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि वो भविष्य की बातें और जो उसके मन में चल रहा है उन्हें लेकर वो और परेशान हो जाता है।
1: जी जी,
0: इसलिए श्रोता साथियों, अपनी नाराजगी व्यक्त करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात है श्रोता साथियों, परिवार में बातचीत के लिए समय निकालना भी चाहिए हमें। आजकल कई परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है, कोई घर के कामों में व्यस्त हो जाता है, कोई मोबाइल में व्यस्त रहता है। ऐसे में श्रोता साथियों, एक दूसरे के मन की स्थिति है वो अक्सर ही हम कम समझ पाते हैं। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जिससे हम परिवार के साथ बातें साझा कर सकें, उनकी परेशानियों को समझ सकें या किसी विषय पर हम बात कर सकें। तो इससे अंजलि जी, हम देखते हैं कि किसी की कोई परेशानी होगी तो वो हमें बताने की कोशिश करेगा। साथ ही साथियों, कहना चाहेंगे कि बच्चों और युवाओं की बातों को हमें महत्व देना चाहिए। उनकी समस्याएं बड़ों की तुलना में छोटी हमें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनकी बात कोई सुन रहा है और सम्मानजनक उसका व्यवहार कर रहा है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान रहे हैं। आगे भी कुछ छोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ की ओर में। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पाए, तो यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि यदि परिवार हमारी बात न समझे तो हम क्या करें। तो ये भी जरूरी है कि हम वास्तविकता को समझे। हर परिवार में सभी सदस्य भावनात्मक रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हों ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी हम अपनी बात बताते हैं लेकिन सामने वाला उसे गंभीरता से नहीं लेता। कुछ लोग तुरंत सलाह देने लगते हैं तो कुछ हमारी परेशानी की तुलना दूसरों की समस्याओं से करने लगते हैं। ऐसे में निराश होकर अपनी परेशानी पूरी तरह दबा लेना जरूरी नहीं है। सबसे पहले बातचीत के लिए ऐसा समय चुनिए जब सामने वाला व्यक्ति शांत हो और बिना जल्दबाजी के अपनी बात सुन सके। अपनी परेशानी को सरल और स्पष्ट शब्दों में बताइए। यह भी कह सकते हैं कि आपको अभी केवल अपनी बात कहनी है और आप चाहते हैं कि सामने वाला पहले ही आपकी बात सुने। यदि परिवार में कोई एक व्यक्ति अपनी बात बेहतर ढंग से समझाता है तो उसे शुरुआत हम कर सकते हैं। वो माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जीवन साथी हो सकता है या कोई अन्य भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है। यदि परिवार में किसी से बात करना सुरक्षित नहीं लगता या वहाँ लगातार अपमान, धमकी या हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। ऐसे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति, परामर्शदाता या उपयुक्त सहायता सेवा से संपर्क करना बेहतर हो सकता है। यदि परेशानी लंबे समय तक बनी रहे, रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं या मन बहुत अधिक दुखी और निराश रहने लगता है तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेने में संकोच न करें। जिस तरह शारीरिक समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेना उचित है, उसी तरह मानसिक परेशानी में विशेषज्ञों से सलाह लेना भी समझदारी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कभी कभी श्रोता साथियों ऐसा भी होता है कि हम अपनी परेशानी है वो परिवार को बताते हैं लेकिन वो हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कुछ लोग तुरंत सलाह देने लगते हैं, कुछ दूसरों की समस्याओं को देखकर यूं कहने लगते हैं कि तेरी समस्या भी वैसी है। यूं कर हमें भावनात्मक समझ है वो हमारी समझ को नहीं समझ पाते। ऐसी परिस्थितियों में श्रोता साथियों निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपनी परेशानी हमेशा के लिए छुपा लेनी चाहिए। सबसे पहले किसी ऐसे समय का दोबारा से बात करने का प्रयास किया जा सकता है जब परिवार के सदस्य शांत हो, अपनी परेशानियों को स्पष्ट शब्दों में समझे और बताएं कि क्या परेशानी है, क्या मदद की जरूरत है। यह सारी बातें समझने के लिए वह तैयार हो तभी हमें अपनी बात रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि परिवार में कोई व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए अधिक तैयार है तो उससे बातचीत की जा सकती है। यह व्यक्ति श्रोता साथियों आपके माता पिता, भाई बहन, कोई अन्य रिश्तेदार या परिवार का विश्वसनीय सदस्य भी हो सकता है। यदि घर में बातचीत करना सुरक्षित आपको नहीं लग रहा है या समस्याएं लगातार बनी रहती हैं तो कोई विश्वसनीय शिक्षक, प्रशिक्षण या जो कोई अन्य हमारे दोस्त होते हैं उनसे भी हम अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि परिवार में खुलकर बातचीत करने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, अपनी जरूरतों को पहचानने और समस्या का समाधान खोजने का अवसर मिलता है। बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, रिश्तों में विश्वास बढ़ सकता है और परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए केवल परेशान व्यक्ति का बोलना ही पर्याप्त नहीं है, परिवार के दूसरे सदस्यों को भी सुनना सीखना होगा। यदि हर कोई अपनी परेशानी बता रहा है तो उसकी बात को सम्मान दीजिए। उसे कमजोर, नकारात्मक या जरूरत से ज्यादा सोचने वाला कहकर चुप मत कराइए। संभव है कि उस समय उसे किसी बड़े समाधान से केवल अपने धैर्य, समझ के साथ उन सारी चीजों को समझने का मौका मिले। इसी तरह हमें भी अपने परिवार वाले व्यक्ति जो हैं उनसे मन की जो बातें हैं, जो जरूरतें हैं उन्हें कहनी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी भावनाओं को पूरी तरीके से अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरों की देखभाल करना अच्छी बात है लेकिन अपनी मानसिक शांति और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसलिए हम अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करें जहाँ बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सके, महिलाएं अपनी परेशानियां और जरूरतें बता सके, पुरुष अपने तनाव को साझा कर सके और बुजुर्ग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। ऐसे परिवार ही एक दूसरे के सुख दुख को समझने और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
1: जी हाँ।
0: और मनीषा, यदि कभी कोई परेशानी इतनी बढ़ जाए कि उसे संभालना कठिन लगे तो मदद मांगने में देर न करें, भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। हर समस्या का समाधान तुरंत मिलना संभव नहीं है, लेकिन सहायता की ओर बढ़ाया गया कदम परिस्थितियों को बेहतर बनाने की शुरुआत हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: श्रोता साथियों, आज से एक छोटी सी पहल कीजिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि आपकी कुछ मिनटों की बातचीत उसके लिए बहुत मायने रखती हो। याद रखिए कि मन की बात कहना कमजोरी नहीं बल्कि अपने आप को समझने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक कोशिश है। इसलिए अपने मन की परेशानी को अकेले सहने के बजाय सही व्यक्ति से साझा कीजिए, क्योंकि समझ, संवाद और सहयोग से ही परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हम रोज़ाना हाजिर हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं आप सभी के साथ में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं साथियों। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश की सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिख कर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643। मैं नंबर फिर से बताना चाहूँगी श्रोता साथियों, क्योंकि इसे नंबर के जरिए आप अपने राय सुझाव और पसंदीदा नगमे हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ चुकी हैं, तो मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। पहली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में, सुनना चाह रहे हैं इस गीत को अमरावती महाराष्ट्र से। सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना गुणा ने, प्रणय कुमार प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणा ने, हीरामन शेंडे जी और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं PS नवाड़कर, निर्मल नवाड़कर, विशाल नवाकर। मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंग्ले, सोपान ताइडे, आशीष मोहेरकर जी। कुमारहेड़ा सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं सैयद मसूर, साइना हसन, अक्सना नाबिया, आफिया इब्राम सद्दाम जी। पथरोड से है विजय अम्बाड़कर, सुनीता, अक्षय, राधिका, ऋषिकेश अम्बाड़कर जी। और भी दोस्त कलानोर से जुड़ रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था कुर्बान फिल्म का, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। कलानोर से फिल्म का नाम है बाजीगर, गीत के बोल हैं बाजीगर ओ बाजीगर। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा, और भी हमारे दोस्त है जज्जर हरियाणा से है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया जी, लोरमी चेचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज ऋषभ मरावी जी, मुंगी पेठण महाराष्ट्र से जुड़ रहे बाबा साहेब कगणक्कर, सागरबाई कगणक्कर, परमेश्वर रोहिणी कगणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण, पटियाला से जुड़ना चाह रहे हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक्करण, गीतू निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता जी, मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, बरेली करेली से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नशीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी जी, और भी दोस्त जो जुड़ रहे हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रंजन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यश और सोमिया जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बाजीगर ओ बाजीगर।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की, और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, फिल्म का नाम है श्रोता साथी कुर्बानी, गीत के बोल हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ये फरमाइश हमारे बीच आई है गिरडीह झारखंड से। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासिन अंजाज, सामा नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच और भी श्रोता साथी किशोर नगर अमरावती से हैं, हीरामन शेंडे, शिल्ला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, रहट गांव कैंप महाराष्ट्र से हैं, अमरावती से श्याम कीटे, वनना कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण, उत्तर प्रदेश से सूरज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी, लल्ला चौरसिया, पिंकी, पूजा और शिवानी शिवा और चौरसिया जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूँगी, जुड़ना चाह रहे हैं बाटापारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन साहू जी, और भी हमारे श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कनेजा, पुनंग कनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी, जुल्म। गीत के बोल हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे बाटापारा छत्तीसगढ़ से ही सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, गीता बाई सेन, रानू अग्रवाल, लक्ष्मी ध्रुव जी, वेदई जोशी, अंशिका जोशी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, अब्दुल गफार डावर जी, और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी मैं, दुगाई सेलो से जुड़ना चाह रहे हैं चंदू कुलकर्णी, हेमलता जी, सी आर कुलकर्णी जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को। नाम बताना चाहूंगी हमारे बीच जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता साथी बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिनना, सादिक अली खान, सारिक अली खान, और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से हैं संजना खर्चे, ललिता खर्चे, प्रयागराज चौधरी जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बागपत उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूंगी, इश्क। गीत के बोल हैं, इश्क हुआ कैसे हुआ। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिना नास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पुसद महाराष्ट्र से रानी मानकर, राम मानकर, सबूरी मानकर, केदार पुसद से जुड़ रहे हैं ये मानकर परिवार सदस्यगण। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह पदापत, मुनेश देवी, अर्जुन बेटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधर नूतन, रामदान्त कश्यप जी। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परकर शाह, कुशल शाह, नितिशा, सुरभिशा, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेन शाह, सुषमा कपूर जी। मजनू गाटेल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, कांशा मलिक। कश्मीर से फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कवासिरुद्दीन। मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, मनहरण वर्मा जी। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से है ये। बोड़खेरा पित्रामल से विनोद मोड़ा, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मोड़त जी, दिलीप सिंह पंवार जी। और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं बिरसर महाराष्ट्र से नंद किशोर कटे, संगीता कटे, साक्षी कटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जैश मेहतरे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय डहुल, बीपी कुलथे जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। गीत के बोल है, इश्क हुआ कैसे हुआ। तब तक आप बने रहिएगा वगर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी जलाना शहर से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों कहानी, गीत के बोल हैं अपनी कहानी कैसे कहें। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे गीता जादव, ओम सुभाष जादव, चंदन जादव, संगीता जादव और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जादव, अनिता जादव, आरती प्रसाद जादव, सोनल जादव, विभिसिया जादव, गाजियाबाद से शिषपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी, डोडी लोहारा से हैं डोमेंद्र नेताम, मंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम जी और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी, डाबकिर और अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, यवतमाल से हैं निशा रानी नागरिकल, निरेश नागरिकर, आरव अर्पिता जी और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। नाम बताना चाहूँगी, श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे अशोक कुमार, अविका जीविका सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार, पूनावाले से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, शायसा सोनवाने जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं अपनी कहानी कैसे कह गए।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों चोरी चोरी चुपके चुपके, गीत के बोल हैं दीवाना है ये मन। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू जी। डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोना मदीबा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से राज एस डी अंसारी, खातून अंसारी, इकबाल मस्तान जी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, ऋषिकेत दले, जीविका दले, सनिका दले। पुणे से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने और विशाखा सोनवाने जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं दीवाना है मन।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेषर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुंभार गली कोलगांव से। फिल्म का नाम है मुकंदर का सिकंदर, गीत के बोल हैं सलामे इश्क मेरी जान। इस गीत के फरमाइश करता है पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंगजी कुंभार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जाकोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही सलामे इश्क मेरी जान। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागर रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत की बोल है गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनुजी खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमी सोमो और मानस सिंह राज। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार माड़वार भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतिजी चौहान। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे गोरी है कलैया। इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, गीत के बोल हैं लड़की बड़ी अनजानी है। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घुड़की जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शिंडी और सिद्धार्थ जी सिंडी। पटियाला दुर्ग से जुड़ना चाह रहे हैं संजय कुमार शाहू, शशांक जी शाहू, सुजिता जी शाहू और सीमा जी शाहू। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफ अब्बासी, सुहान अब्बासी और जानजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत की बोल है लड़की बड़ी अनजानी है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेली वाला से। गीत के बोल ही बोल राधा बोल। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीपी आलिया आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से शायद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरी अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजान, नरगिसी खातून। उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है सहारनपुर से समीद मशरूम, साइना हसन, अक्सना जिया, आफिया इब्राहिम और सदाम जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत की बोल ही बोल रहा था बोल, तूने क्या किया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी से। गीत के बोल हैं, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उसका होता है। इस गीत की फरमाइश करता है जोन टिकी स्टोर, रोजी टिकी स्टोर, पर्ल टिकी स्टोर, विलेज टिकी स्टोर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगे, महेश संगे, प्रजेश संगे, प्रतीश संगे और संगे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं वासी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है पत्रोड़ से विजय अंबटेकर, अनिता अंबटेकर, सुनीता अंबटेकर, अक्षय अंबटेकर, राधिका अंबटेकर और ऋषिकेश जी अंबटेकर। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मोहब्बत, गीत के बोल है आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उसका होता है। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को।
1: निसी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के, शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं

आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल ही सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभीर जी चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दिया जी चौरासिया। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, सनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु युक्ता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छनुला श्रीवास। इस गीत की अनुरोध करता है मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पेठन से अनिता जाधव, सुरेश जाधव, सोनम जाधव, आरती जाधव, पूजा और सियाजी जाधव। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, मानाशा माला ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, विजेंद्र अग्रवाल जी, राजू अग्रवाल, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफा डावर जी। बस्तर से जुड़ना चाह रही हैं पूनम जी नायडू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, प्राग टेलर, पूना राम, कृष्णा जी। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट से विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला जी भिंडी, विजय शुभम, पवन जरी और सजीव जी। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजवश पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, मोहिनी लक्ष्य और बलवीर सिंह जी। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रही पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, शोपान और नारायण जी और आशीष मेहकर जी। इसे भी जुड़ना चाह रही रोरमेच अजेडी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है खड़वासी अब्दुल गफ्फार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी। इस गीत के अनुरोध करता है यतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जेशवाल, गणेशलाल जेशवाल, सुप्रसाद जेशवाल, अपनव जेशवाल, दुर्गेश्वरी जेशवाल, राखी जेशवाल, तृप्ति जी जेशवाल। जोधपुर राजस्थान से जुड़ रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। दादरीगढ़ भवानी से जुड़ना चाह रहे हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनाल जी मेहरा। उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराब जहां जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही सुन सुन बरसात की धुन। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथी श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। श्रोता साथियों, यह तो थी आज के संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: जनहित में प्रसारित। जागृति बोल, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
3: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया नी निशुल्क जांच करावी सुवे।
3: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार नी गोरिये निशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
3: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM
1: लेकर हाजिर श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है श्रोता साथियों उन बेटियों के नाम जो सिर्फ अपने सपनों को देखने का साहस ही नहीं करती बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते भी बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: आज का विषय है बेटियां और युवा नेतृत्व, बदलाव की नई पहचान को लेकर।
0: जी हाँ,
1: जब हम नेतृत्व की बात करते हैं कशिश, तो अक्सर हमारे मन में किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की तस्वीर आती है, लेकिन क्या नेतृत्व का मतलब केवल किसी पद पर होना है? बिल्कुल नहीं श्रोताओं, नेतृत्व का मतलब है सही बात के लिए आवाज उठाना, जिम्मेदारी लेना, दूसरों को साथ लेकर चलना और समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करना।
0: बिल्कुल,
1: और जब यही नेतृत्व हमारी बेटियां और युवा मिलकर करते हैं तो बदलाव की तस्वीर और भी मजबूत हो जाती है कशिश।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
2: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बेटियां और युवा नेतृत्व बदलाव की नई पहचान को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो जागृति जी, हम देखते हैं कि हर बेटी को अपने जीवन से जुड़े फैसलों में अपनी बात रखने के साथ साथ शिक्षा पाने, आगे बढ़ने और अपनी क्षमता के अनुसार सपने देखने का अधिकार होता है, क्योंकि बेटी केवल परिवार का हिस्सा नहीं, वह समाज के भविष्य की निर्माता भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: हम जानते हैं कि एक बेटी जब पढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, उसके ज्ञान का प्रभाव परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचता है। वहीं जब बेटी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है तो वह दूसरी बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, आज जरूरत सिर्फ ये कहने की नहीं है कि बेटियां आगे बढ़ें, जरूरत है सोचने की कि हम बेटियों के आगे बढ़ने का रास्ता कितना आसान बना रहे हैं।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर ये मान लिया जाता है कि नेतृत्व के लिए बहुत अधिक उम्र, अनुभव या कोई बड़ा पद जरूरी है, लेकिन असली नेतृत्व उम्र से नहीं श्रोताओं, सोच और जिम्मेदारी से पैदा होता है।
0: बिल्कुल।
1: एक युवा लड़की अगर अपने स्कूल में स्वच्छता अभियान शुरू करती है तो नेतृत्व है। अगर कोई बेटी अपने गाँव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है तो वो नेतृत्व है।
0: जी।
1: अगर कोई युवा लड़का अपनी बहन की शिक्षा को उतना ही महत्वपूर्ण मानता है जितना अपनी शिक्षा को, तो ये भी नेतृत्व है।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई युवा मिलकर गांव में बाल विवाह, बाल श्रम, नशे या डिजिटल दुरुपयोग जैसी समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलाता है तो भी ये नेतृत्व है। यानी कि श्रोताओं, नेतृत्व का मतलब हमेशा मंच पर खड़े होकर भाषण देना ही नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है कि जहां बदलाव की जरूरत दिखे वहां पहला सकारात्मक कदम उठाया जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, अब यही प्रश्न ये उठता है कि बेटियां क्यों बनती है नेतृत्व की मजबूत आवाज।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, हमारे समाज में बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, खेल प्रशासन, सेना का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, तकनीक का हो या फिर सामाजिक सेवा का। हर जगह बेटियां अपनी पहचान बना रही है जागृति जी। लेकिन अभी भी कई जगह बेटियों को अपनी बात रखने, निर्णय लेने और आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कभी परिवार की सोच उन्हें रोकती है तो कभी समाज की अपेक्षाएं, तो कभी आर्थिक परिस्थितियां और कभी ये डर कि लोग क्या कहेंगे।
1: जी हाँ।
0: लेकिन बदलाव तभी आएगा जागृति जी, जब हम बेटियों को केवल सुरक्षा नहीं अवसर भी देंगे। साथियों, बेटियों को यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम लड़की हो इसलिए ये मत करो, बल्कि उसे यह सुनने की जरूरत है कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि बेटियों के नेतृत्व की पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा केवल किताब पढ़ना या परीक्षा पास करना नहीं है। शिक्षा हमें सवाल पूछना सिखाती है, सही और गलत में अंतर समझना सिखाती है और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को पहचानना सिखाती है। एक शिक्षित बेटी अपने जीवन के फैसलों को बेहतर तरीके से समझ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के रास्ते तलाश सकती है और अपने परिवार तथा समुदाय में भी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है।
0: जी हाँ।
1: इसीलिए साथियों, बेटियों की शिक्षा को खर्च नहीं, भविष्य में निवेश समझना होगा। और युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास की बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करें।
0: बिल्कुल।
1: अगर किसी दोस्त की बहन पढ़ाई छोड़ रही है तो मजाक बनाने के बजाय उसके परिवार से बातचीत करने की कोशिश करें। अगर कोई लड़की अपने सपनों को लेकर असमंजस में है तो उसे कमजोर समझने के बजाय उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। यही युवा नेतृत्व है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अपनी बात रखने का साहस भी नेतृत्व की पहचान होती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर बात करें तो युवा साथियों, नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपनी बात स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखी जाए। कई बार लड़कियां अपनी बात इसलिए नहीं रख पाती जागृति जी, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में श्रोता साथियों, हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ बेटी सवाल भी पूछ सके, अपनी पसंद भी बता सके, अपनी परेशानियों को साझा भी कर सके और किसी निर्णय पर अपनी राय भी दे सके। और यहाँ भी हमारे युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि युवा अपने घर और समाज में ऐसी संस्कृति बना सकते हैं जागृति जी, जहाँ बेटियों की बात सुनी जाए।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि कहा भी गया है कि जिस समाज में बेटियों की आवाज़ सुनी जाती है वहाँ बदलाव की आवाज़ और भी मजबूत होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहुत ही अच्छी बातें चल रही है, आगे भी हम इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी बेटियां और युवा नेतृत्व बदलाव की नई पहचान को लेकर, जैसे कि बहुत सारी बातें की थी, यही जानते हैं युवा साथी बने केवल दर्शक नहीं।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि कशिश आज का युवा केवल बदलाव देखने वाला नहीं बल्कि बदलाव करने वाला बन सकता है। हमारे आसपास बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं हैं, स्कूल छोड़ती बेटियां, डिजिटल दुनिया में असुरक्षा, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव, बाल विवाह जैसी सामाजिक चुनौतियाँ।
1: जी हाँ,
0: हर समस्या को सरकार या किसी संस्था के भरोसे छोड़ देना समाधान नहीं है। युवा अपने स्तर पर भी शुरुआत कर सकते हैं। 5 युवा मिलकर 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कुछ युवा गांव में जागरूकता बैठक कर सकते हैं। युवा सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी बालिकाओं की शिक्षा और समान अवसरों पर संवाद कर सकते हैं। छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। जी जो छोटे छोटे कदम है कशिश, अगर ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे जो युवा साथी है वो केवल दर्शक नहीं बनेंगे बल्कि साथी भी बनेंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे युवाओं को ये भी समझना होगा कि नेतृत्व का मतलब अकेले आगे बढ़ना नहीं है बल्कि सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि युवाओं एक अच्छा नेता वह है जो सबसे आगे अकेला खड़ा हो।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि युवा साथियों, एक अच्छा नेता वह नहीं होता जो आगे अकेला खड़ा हो, अच्छा नेता वह है जो दूसरों को भी आगे आने का अवसर दे। बेटियों का नेतृत्व भी तभी मजबूत होगा जागृति जी, जब वे एक दूसरे के साथी बने। एक लड़की अगर किसी दूसरी लड़की को पढ़ाई में मदद करती है, उसे प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करती है या उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, तो वो उसके जीवन में एक सकारात्मक नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। युवाओं को भी प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग की भावना विकसित करनी होगी, क्योंकि बदलाव की दौड़ में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे आगे कैसे निकलूं, बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया से जुड़ी हुई है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के नए रास्ते दिए हैं। एक बेटी अपनी कहानी, अपनी कला, अपने विचार या अपने काम को दुनिया के सामने रख सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी भी जरूरी है। युवाओं के समझना होगा कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का माध्यम भी बन सकता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन हम देखते हैं कि ऑनलाइन किसी का मजाक उड़ाना, गलत जानकारी फैलाना या किसी की निष्ठा का सम्मान न करना नेतृत्व नहीं है। सच्चा डिजिटल नेतृत्व वही है जो तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान, सहयोग और सकारात्मक बदलाव के लिए करे।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में अगर बात करें गांव की बेटियों की, तो हमारे गांव और छोटे कस्बों में भी नेतृत्व की बहुत संभावनाएं होती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, गांव की बेटी अपने समुदाय में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संरक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों पर काम कर सकती है। कई बार हम दोस्तों नेतृत्व को बड़े शहरों और बड़े संस्थानों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली बदलाव तो वहीं से शुरू होता है जहां हम रहते हैं। जागृति जी, अगर एक बेटी अपने गांव की 5 लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है तो यह कोई छोटा काम नहीं होगा।
0: बिल्कुल,
1: अगर एक युवा अपने गांव के लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करता है तो ये भी एक नेतृत्व है। क्योंकि साथियों, बदलाव के लिए बड़े शहर की जरूरत नहीं होती, बड़ी सोच की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, इसी तरह परिवार की भी भूमिका होती है, यानी कि श्रोताओं, बेटियों के नेतृत्व को मजबूत बनाने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार अगर बेटी की बात सुनेगा, उसके सवालों का जवाब देगा, उसे निर्णय लेने का अवसर देगा और उसके शिक्षा को प्राथमिकता देगा तो बेटी का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: बेटे और बेटी के बीच अवसरों का अंतर कम करना जरूरी है। बेटे से अगर पूछा जाता है तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बेटी से भी यही सवाल पूछा जाना चाहिए। श्रोताओं,
1: जी जी,
0: बेटी के सपनों को अगर परिवार गंभीरता से लेता है तो बेटी के सपनों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। श्रोताओं, इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि जहां बेटियां नेतृत्व करती है तो समाज को नई सोच मिलती है, वे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को अलग नजरिए से देख सकती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कशिश कि बेटियों का नेतृत्व केवल बेटियों के लिए नहीं है, ये पूरे समाज की प्रगति के लिए है। एक ऐसा समाज जहाँ लड़कियाँ और लड़के समान अवसरों के साथ आगे बढ़े, वहाँ प्रतिभा का नुकसान कम होता है और विकास की संभावनाएं बढ़ती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोताओं, बेटियों को आगे बढ़ाना किसी एक वर्ग का काम नहीं है, ये परिवार की जिम्मेदारी है, ये युवाओं की जिम्मेदारी है, ये समुदाय की जिम्मेदारी है, साथ ही ये हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में हमारे युवा साथियों को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने आसपास की बेटियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा हूँ, क्या मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, क्या मैं उनके सपनों का सम्मान करता हूँ, क्या मैं अपनी बहन, दोस्त या साथी को उसके फैसलों में प्रोत्साहित करता हूँ। इसी के साथ ही क्या मैं किसी गलत सामाजिक सोच को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेता हूँ क्योंकि

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बचपन खुशियों, सपनों और नई उम्मीदों का समय होता है। बच्चों को खुश रखने के लिए जरूरी है कि हम उनकी बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दें। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि बच्चों के खुशहाल बचपन में शिक्षक और माता पिता की भूमिका क्या है और बच्चे खुद अपने बचपन को किस तरह देखते हैं। बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातचीत होने वाली है कि बच्चों के खुशहाल बचपन में शिक्षक और माता पिता की क्या भूमिका है और किस तरीके से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य यानी कि तन के साथ मन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम में हमारे आज के विशेषज्ञ शिक्षक से कि किस तरीके से वे अपने बच्चों को समझते हैं और किस तरीके से वो बच्चों के खुशहाल बचपन की कल्पना करते हैं।
1: मैम नमस्कार।
2: नमस्ते मैम।
1: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
2: थैंक यू मैम।
1: जैसा कि मैम आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: जी, मैं स्थानीय विद्यालय में जीव विज्ञान व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप एक शिक्षिका है, तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम में आपसे जानना चाहूंगी कि अभी के समय में बच्चों की जो चीजें हैं, जो सवाल पूछने के तरीके हैं, उनमें क्या बदलाव आया है और इसे आप कैसे समझती हैं?
2: जी मैम, अभी तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो गए हैं, क्योंकि AI का ज़माना है, तो बच्चे बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। उनको क्या, कब, क्यों, कैसे और तथ्यों पर आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं और करके दिखाने का और मतलब बहुत अच्छी तरीके से विस्तार में उनको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में सरल भाषा में समझाने को वो ज़्यादा कहते हैं।
1: बिल्कुल। तो जो बच्चों में बदलाव आ रहे हैं उनका शिक्षक को समझना क्यों ज़रूरी है?
2: जी मैम, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी, क्षमता, उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षक को हर बच्चे को समझना चाहिए कि कौन सा बच्चा कब कैसे सीख पा रहा है, उसका स्तर क्या है, उसकी रुचि किसमें है, इसलिए शिक्षक को यह जानना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम अभी हम देख रहे हैं कि समय पूरी तरीके से बदल चुका है, बहुत सी बार बच्चे जो है वो पढ़ाई को लेकर या उनके साथ कुछ अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है उसको लेकर भी वो तनाव और परेशान में रहते हैं। अगर विद्यालय में बच्चा चुप या शांत दिखाई दे और पहले से जो उसकी स्थिति थी, जो व्यवहार था, उसमें बदलाव हो, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए और उसकी स्थिति को शिक्षक कैसे समझ सकता है?
2: जी मैम, अगर बच्चा पहले बहुत अच्छा था और अचानक से वो चुप चुप रहने लग जाता है, स्कूल में आना कम कर देता है और अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति को समझने के लिए बच्चे से अकेले में हमको बात करनी चाहिए और उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि आपकी बात कहीं लीक नहीं होगी और खुद से बात करनी चाहिए, उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। और अगर अपन से सॉल्व नहीं होता है तो अपन स्कूल में हायर प्रिंसिपल, सीनियर्स दूसरे हैं, उनसे बात करके और बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी समस्या सुलझा सकते
1: हैं। बिल्कुल। और हम देखते हैं मैम कि स्कूल में सब बच्चे अलग अलग होते हैं, कोई पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई अलग एक्टिविटी में होशियार होता है। ऐसे में जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उसका आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाएं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हम कैसे कर सकते हैं?
2: जी मैडम, मैं मानती हूँ कि हर बच्चे की अपनी क्षमता और गति अलग अलग होती है, पर अगर वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो खेल कूद में, अदर एक्टिविटीज़ में और रचनात्मक गतिविधियों में बहुत ही ज़्यादा होशियार होगा। तो जब भी वो कुछ ऐसा कार्य करता है तो उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को हमको बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसकी प्रार्थना सभा में और स्कूल स्तर पर उसकी बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। इससे बच्चे में क्या होगा, आत्मविश्वास डेवलप होगा और वो धीरे धीरे अपनी इस हुनर के साथ साथ वो पढ़ाई में भी अच्छा हो जाएगा और उसको सभी टीचर्स का मार्गदर्शन मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवा रही हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि जो बच्चा अपनी भावनाएं कहीं व्यक्त नहीं कर पाता, कुछ चीजों को लेकर वो परेशान है, तो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना क्यों जरूरी है?
2: जी मैम, कि वो अपनी भावनाओं को समझा पाए कि मतलब वो किस चीज में अच्छा है, तो वो अगर टीचर से अपना मार्गदर्शन लेना चाहता है, वो टीचर से मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, ताकि उसका जो किस विषय में वो अच्छा है वो अपन उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। इससे बच्चे का अंदर का जो स्तर है वो अपन को पता चलेगा और वो किस चीज में होशियार है, अपन उसको उसी चीज की आगे बढ़ा सकते हैं उसको।
1: बिल्कुल। और बच्चे जो हैं उनके खुशहाल बचपन के लिए हम सभी जानते हैं कि शिक्षक और घर परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसे में शिक्षक और माता पिता की क्या भूमिका है बच्चों के खुशहाल बचपन के लिए?
2: बच्चों का खुशहाल बचपन जो है वो मैडम बहुत ही सुरक्षित सुरक्षित होना चाहिए, उनके पोषण संबंधी सारे वैल्यूज़ हैं वो फुलफिल होने चाहिए। तो पेरेंट्स इस विषय में बिल्कुल जागरूक हो कि मेरे बच्चे को समान शिक्षा, समान अधिकार और पोषण संबंधी सारी मैंने व्यवस्था कर रखी और मेरा बच्चा कहीं पर भी किसी से भयभीत नहीं है। और स्कूल स्तर पर भी हमको ऐसा वातावरण देना चाहिए कि जिससे बच्चा को कंप्लीट गाइडेंस मिले, वो यहाँ पे बिना किसी के डरे रहकर बहुत अच्छे तरीके से सभी गुरुजन से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। तो इसके लिए हमको अच्छा पॉजिटिव स्कूल में सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए बच्चे के साथ और माहौल भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे का तब तक ही बना रहता है जब ये दोनों चीजें उनकी अच्छी तरीके से हो। तो इनको लेकर विद्यालय में क्या प्रयास किए जाते हैं और माता पिता को आप इन सारी चीजों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: जी मैम, जैसे कि आपने बोला, इन सब एक्टिविटी के लिए हमारे हमेशा मासिक तौर पर भी और इस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बेड टच, गुड टच वाला और इनको आयरन सप्लीमेंट का जो अपन गोलियाँ हैं वगैरह, इन सबको मतलब इनका प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है मैडम। हमेशा ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे बच्चा ये सीखता रहता है कि उसके आगे ज़रूरत भविष्य में क्या क्या है। और पेरेंट्स का मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हमेशा अभिभावक और टीचर्स की मीटिंग होती है जिसमें हम अभिभावकों को बच्चे का जो प्रगति स्तर है वो हम उनसे साझा करते रहते हैं, जिससे कि पेरेंट्स अपनी समस्या, बच्चों से रिलेटेड समस्या हमारे सामने रखते हैं और हम भी बच्चों का स्तर उनको बता देते हैं, जिससे कि दोनों टू वे कन्वर्सेशन होता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आज कार्यक्रम में हमने आपसे जाना कि किस तरीके से बच्चों में अभी के समय में बदलाव आ रहा है और किस तरीके से उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, तो आज जो कार्यक्रम हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे इस बदलाव को हम और आगे आने वाली पीढ़ियों तक लेकर जा सकें?
2: मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप गुरुजन हैं तो आप अपने वैल्यूज हैं, अपना मार्गदर्शन है वो बच्चे को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपको बच्चों को देने का प्रयास करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: थैंक यू मैम।
0: जैसा कि श्रोता साथियों, अभी हमारे बीच में शिक्षक जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि बच्चे अपना काफी समय स्कूल में बिताते हैं, तो इस समय में शिक्षक जो है वो किस तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है उसे अच्छे से निभाते हैं। यही बात करते हैं अब हम कार्यक्रम में हमारे कुछ बच्चों से कि किस तरीके से उन्हें स्कूल में अच्छा लगता है, कौन कौन सी चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे बच्चों की महत्वपूर्ण बातों को।
1: नमस्ते।
3: नमस्ते मैम।
1: आपका क्या नाम है?
3: परिकला।
1: आप कौन से क्लास में पढ़ती
3: हैं? 11th बी।
1: आपको सबसे ज्यादा अच्छा स्कूल में क्या लगता है और उसकी वजह क्या है?
3: मुझे स्कूल में सबसे ज्यादा यहाँ के टीचर और स्कूल का वातावरण सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और
1: इसकी वजह क्या है?
3: उसकी वजह यहाँ के टीचर बच्चों को समझते हैं और डांटने की बजाय प्यार से समझाते हैं।
1: स्कूल में आपको दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है?
3: दोस्तों के साथ खेलना, सामूहिक पढ़ाई करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: आपके शिक्षक की कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है?
3: वो हमें बिना डराए प्यार से समझाते हैं, वो सबसे अच्छा लगता है।
1: और आपके लिए खुशहाल बचपन क्या है और बचपन में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलना चाहिए जो आपको अभी तक मिला नहीं?
3: मोटिवेशन।
1: वो मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है अभी आपको?
3: फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स।
1: और क्या करना चाहते हो आप बड़े होकर?
3: आगे जाके तो बहुत कुछ है पर अभी सोचा नहीं है।
1: मतलब एक कोई मोटिवेट लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, क्या करना चाहती हो?
3: टीचर लाइन में जाना है।
1: क्यों, टीचर ही क्यों बनना है?
3: क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है मेरे लिए।
1: कैसे ऑप्शंस? मतलब
3: कि मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है।
1: अच्छा, इसलिए आपको बनना है। ठीक है, थैंक यू।
3: थैंक यू मैम।
1: आपका क्या नाम है?
4: खुशबू मेरा।
1: आपको क्या अच्छा लगता है आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा?
4: दोस्तों के साथ पढ़ाई करना और स्कूल का वातावरण।
1: आपके स्कूल में क्या ऐसा खास है जो आपने पहले कहीं स्कूलों में देखा नहीं है या अपने दोस्तों से सुना नहीं है?
4: यहाँ की साफ सफाई।
1: यहाँ की साफ सफाई आपको अच्छी लगती है। और क्या क्या एक्टिविटीज होती है आपके स्कूल में?
4: स्कूल में खेल का भी होता है, डांस और अन्य गतिविधियाँ भी होती
1: है। और आपको पढ़ाई के अलावा कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा पसंद है?
4: पढ़ाई के अलावा डांस।
1: डांस करना अच्छा लगता है। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो?
4: मैं टीचर्स की लाइन में जाना चाहता
1: हूँ। अच्छा, और हम देखते हैं ना कि घर परिवार में बहुत सी बार लड़का लड़की, ये सुना है आपने, बेटा बेटी एक समान, ये सारी चीजें, तो आपका इसको लेकर क्या कहना है? आपके घर में या स्कूल में ये सारी चीजें होती हैं कभी?
4: नहीं, ऐसा नहीं होता।
1: घर पर
4: नहीं,
1: कहीं भी नहीं होता है? कभी नहीं सुना ये सारी चीजें?
4: नहीं।
1: या सुना है, किसी और के साथ होते हुए देखा है?
4: हाँ, किसी और के साथ देखा है।
1: तो क्या लगता है, क्या बदलाव करने की जरूरत है उसको लेकर?
4: बेटे और बेटियों में समान तरह से रहना चाहिए।
1: और जैसा कि आप बता रही कि आपने देखा नहीं है, कहीं और देखा है, तो आपने कभी कोशिश की है किसी को आप बताओ कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो सही नहीं हो रही है? नहीं करी अभी तक, अब करोगे आगे जाकर?
4: हाँ।
1: थैंक यू। आपका क्या नाम है?
5: जागृति नीलम।
1: अच्छा, आप क्या कर रही हैं अभी पढ़ाई में?
5: मैं साइंस लिए भी बायो।
1: अच्छा, आपने साइंस बायो लिए, और हम देखते हैं कि साइंस बायो का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट आया?
5: क्योंकि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है और इतनी कठिन नहीं है बायो, पढ़ने बैठो तो एकदम सरल है।
1: सरल लगती है। और मेडिकल लाइन में आप क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है?
5: अभी मेरे को आगे जाके नीट की तैयारी करनी है।
1: सुना है नीट की तैयारी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत और क्या सब कुछ? तो आपने क्या योजना बना रखी है आपकी स्टडी को लेकर?
5: अभी योजना तो बना रखी है, जो हो रही है स्टडी वो आगे तक चलती रहेगी, जैसे चल रही है वैसी की वैसी मेहनत पूरी करेंगे।
1: अगर आपको कभी कोई परेशानी होती है या कुछ होता है तो आप किसको बताती हैं सबसे पहले?
5: मैं सबसे पहले मेरे टीचर्स को बताती हूँ, मम्मी पापा को और भरोसेमंद दोस्त को।
1: और जब आप उदास होती हैं तो आपको कौन सी चीज़ करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है?
5: मैं मेरा मन पसंदीदा काम करने से अच्छा लगता है, और टीचर से बातें करके।
1: मनपसंद कार्य कौन सा है और टीचर कैसे सपोर्ट करते हैं आपको, क्या बातें करती हैं आप टीचर से?
5: टीचर से मैं जब कोई कठिन काम हो मेरे से नहीं हो तो मैम से बता के बातें करती हूँ, वो मुझे सही राह देते हैं।
1: ऐसा कौन सा कठिन काम है जिसको लेकर आप टीचर्स के पास कभी गई हैं और पेरेंट्स से भी आपने उन सारी चीज़ों को बात की है? कोई पड़ाव आया है ऐसा आपके जीवन में अभी तक?
5: हाँ, आया है। तो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे वो नहीं आए थे, तो उसके बाद मैंने उस क्वेश्चनों को मैम के पास जाके फिर से पढ़ा था।
1: और आपके पेरेंट्स आपकी बातें ध्यान से सुनते?
5: कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं सुनते, नज़रअंदाज करते बातें।
1: तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने पेरेंट्स से, क्या उम्मीद रखती हैं आप अपने पेरेंट्स?
5: मैं पेरेंट्स से ये उम्मीद रखती हूँ कि वो मेरी बातें ध्यान से सुने, मेरी बातों को नज़रअंदाज ना करें और मुझे दूसरों से कंपेयर ना करें।
1: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप कार्यक्रम से जुड़ी।
5: थैंक यू मैम।
1: हेलो, आपका क्या नाम है?
6: मेरा नाम परी टेलर है।
1: आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर?
6: मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ।
1: अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो जीवन शैली वो पूरी तरीके से बदल गई है। आपके जीवन में अभी के समय के अनुसार क्या बदलाव आया है? हम देखते हैं कि बच्चे तनाव, स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें हम लड़कियों को लेकर भी सुनते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जिसे आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से साझा करना चाहेंगी?
6: फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस से फ्री रहेंगे तो वो पढ़ाई में अच्छा मन लगा के पढ़ सकते हैं और वो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
6: उनको जो चाहिए मतलब लाइफ में जो बनना है वो बन सकते हैं। वो
1: अभी के समय में आपने क्या देखा है अपने फ्रेंड्स में या जो दोस्तों से आप बातचीत करती हैं, ज़्यादातर तनाव होता क्यों है?
6: पढ़ाई को लेके कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी, इस तरह के फैमिली प्रॉब्लम भी कुछ होती है लड़कियों की कि जो पढ़ने नहीं भेजते, कोई लड़के लड़की में कोई भेदभाव होता है इस तरह से।
1: तो आप के आसपास में कोई ऐसा है?
6: नहीं, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना बहुत कुछ है।
1: बिल्कुल, तो सुना तो आसपास के लोगों से ही होगा।
6: हाँ।
1: तो कहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या बदलाव आप चाहती हैं कि लोगों में आए?
6: मैं ये चाहती हूँ कि लड़का और लड़की दोनों को समान माना जाए और दोनों को पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाए और दोनों को सपोर्ट बराबर मिलना चाहिए।
1: तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपको टीचर ही क्यों बनना है?
6: मुझे टीचर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे विदेश में नहीं जाना, मुझे फैमिली के साथ रहना है और यहीं रह के मेरे को मेरा करियर करना है।
1: ऐसा ज़रूरी है कि टीचर लाइन में जाएंगे तभी हम विदेश नहीं जा सकते, कोई और फील्ड भी ऐसी हो सकती है, टीचर ही क्यों?
6: मुझे टीचिंग लाइन ही अच्छी
1: लगती है। क्योंकि एक लड़की के लिए कहा जाता है कि टीचर बनना अच्छा है इसलिए?
6: नहीं, मैं ऐसा नहीं है लेकिन मुझे टीचिंग लाइन अच्छी लगती है इसलिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको टीचिंग लाइन अच्छी लगती है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा बदलाव आपके जीवन में जो आपको तनाव और इन सारी चीज़ों को लेकर जाता हो, या फैमिली में ऐसा भावनात्मक सपोर्ट आपको नहीं मिला हो ऐसी कोई चीज़?
6: मुझे मेरी फैमिली से फुल सपोर्ट है, मुझे जो भी कमी हो वो पूरी करते हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू।

0: जाएंगे।
1: आपका क्या नाम है?
0: कृष्णा सेवक।
1: आप कौन सी क्लास में है?
0: मैं 11th B।
1: 11th में है आप। आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर?
0: टीचर।
1: टीचर बनना चाहती हूँ। आप सबसे मैंने बात की, सिर्फ एक ही है जो मेडिकल लाइन में जाना चाहती हैं, बाकी आप सब टीचर बनना चाहती हैं।
0: ऐसे तो है ना, पुलिस बनना है, पर मैं सब यूँ बोलते हैं कि पुलिस लाइन मतलब अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए, ऐसे बोलते हैं।
1: ऐसा किसने बोला आपको? आपने देखा बहुत से लड़कियां अभी पुलिस लाइन में गई हैं,
0: और घर पे भी सब यूँ ही बोलते हैं कि ये पुलिस ही क्यों बनना है, यूँ अच्छी नहीं है जो, ऐसे बोलते हैं।
1: आपको भी ये फील होता है कि पुलिस लाइन में जाना अच्छा नहीं है?
0: नहीं, मेरे को तो यूँ ही है कि मैं ना जाऊंगी।
1: फिर कैसे जाऊंगी? पेरेंट्स मना कर रहे हैं
0: तो भी जाऊंगी मैं।
1: कैसे कैसे जाऊंगी?
0: मेरे पापा है ना, वो मुझे लगता है पापा मेरा सपोर्ट करेंगे।
1: आपके पापा आपका सपोर्ट करेंगे? कैसे करते हैं पापा सपोर्ट?
0: करते हैं कि है ना, मतलब इतने बच्चे दूसरे आगे निकलो, तुम भी निकलो, यूँ
1: आगे बढ़ो,
0: आगे बढ़ो। हाँ।
1: तो अगर आपको कभी इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको पुलिस बनना है और पेरेंट्स और उनका कहना है कि पुलिस लाइन अच्छी नहीं, तो इस चीज़ को लेकर कभी स्ट्रेस या कोई ऐसी चीज़ आपने अपने टीचर्स वगैरह से कही है कभी?
0: हाँ, मैंने बोली थी ना सर, सो एक बार एक सर है ना, उनको बोला था मैंने, तो सर बोले थे कि ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, यूँ बोला उन्होंने।
1: फिर आपको भावनात्मक सपोर्ट कैसे मिल रहा है आपके टीचर से और घर परिवार से? इस चीज़ से आप बाहर कैसे निकल रही हैं कि अगर नहीं बन पाए या बन पाए कैसे क्या करूँगी?
0: नहीं, मैंने मेरे फादर को बोला था कि है ना मैं पुलिस ही बनूंगी, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं बन जाना, पर एक बार पढ़ाई करना।
1: बिल्कुल, उसके लिए क्या क्या करना होता है आपको पता है?
0: उसके लिए है ना 12 पढ़ के फिर वो NCC क्या ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद एग्जाम देना।
1: कितने सारे पापड़ वगैरह बेलने पड़ते हैं, वही वो तो सब पता है आपको?
0: पता है मेरे को।
1: फिर भी आपको बनना है?
0: बनना है।
1: ठीक है, थैंक यू।
0: थैंक यू।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते मैडम।
1: आपका क्या नाम है?
2: हर्षित पाटीदार।
1: अच्छा, आपका क्या सपना है बड़ा?
2: मेडिकल फील्ड में जाना।
1: क्यों?
2: दूसरों की मदद करना फ्री में। आज के टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जब पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन उनका काम ठीक से नहीं होता, इसीलिए वो एक चीज़ बदलनी है हमको।
1: तो आप फ्री में काम करेंगे?
2: हाँ, फ्री में तो नहीं कह सकता क्योंकि आज के टाइम में फ्री में बहुत काम करना मुश्किल भी पड़ सकता है, लेकिन मैं उनसे कम पैसों में करूँगा जिससे गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सकूँ मैं।
1: आपको पता है मेडिकल लाइन में कितनी सारी स्टडी करनी पड़ती है, कितनी मुश्किलें आती हैं? क्या सोच रखा है आपने, क्या योजना बना रखी है?
2: अभी तो फिलहाल मैं 12th साइंस में हूँ, अभी इसके बाद जाऊँगा फिर BSc नर्सिंग में करूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे को पेपर दूंगा और ये पेपर दूंगा फिर सिलेक्शन होगा, उसके बाद धीरे धीरे लोगों की मदद करूंगा यूं करके।
1: और अगर असफल हुए तो?
2: प्राइवेट करेंगे, मदद तो करनी है, कहते नहीं मैडम, मान लिया तो मान लिया और ठान लिया तो ठान लिया बस।
1: बिल्कुल, आपका जो ये वाक्य है वो बहुत ही अच्छा है, असफल हुए लेकिन प्रयास करना है, प्राइवेट क्यों करोगे, हार के बाद जीत है। आपने सुना है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने

0: रखा कि साइंस लू की है मैंने।
1: हाँ।
0: एक से टेंथ तक तो मेरे को साइंस मतलब हाई लेवल के ऊपर ही जाती थी। फिर मैं टेंथ में मेरी क्लास टीचर थी आरती मैडम, मतलब क्लास टीचर तो नहीं, आरती मैडम साइंस की टीचर थी मेरी, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे समझाया कि साइंस कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस पढ़ना आना चाहिए, एक बार जो बंदा पढ़ ले के वो हो सकता है। फिर मैंने मैडम ने मेरे को समझाया, फिर मैंने साइंस ली और फिर इलेवंथ में आके मुझे पल्ले मैडम का सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे ऐसा मतलब मोटिवेशन किया कि मुझे अब साइंस अच्छे लगने लगी है, बाकी की सब्जेक्ट पसंद आना बंद हो गई है।
1: फिर उन सब्जेक्ट्स का क्या हुआ?
0: कौन सी
1: बाकी जो सब्जेक्ट्स अब अच्छी मतलब लगती है?
0: जैसे कि साइंस तो मुझे अच्छी लगती है बायो, उसके लिए भी मैं और भी पढ़ लेता हूँ, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब अच्छी लगती है, पहले मुझे क्या साइंस बिल्कुल पसंद नहीं थी।
1: आपने कैसे अपने शेड्यूल बना रखा है, कैसे पढ़ना है? क्योंकि साइंस के लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है यही सबसे सुना हुआ है, लेकिन हमको ये पता है कि सारी चीजें सारे सब्जेक्ट समान होती है, तो आपने कैसे अपनी पढ़ाई की योजना बना रखी है?
0: मैडम यूं है, बहुत बच्चे बनाते हैं टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो नहीं करते, ये मैं भी मानता हूँ कि ठीक है टाइम टेबल, रोज का टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, लेकिन मेरा एक फिक्स है कि रोज का रोज पढ़ लो, इतना काफी होता है। मेरे टीचर भी यही बोलते हैं कि भाई एक दिन नहीं हुआ तो कोई टेंशन मत लो, दूसरे दिन करो, दूसरे दिन हुआ कोई टेंशन लो, तीसरे दिन करो, लेकिन करना बहुत जरूरी है, करना मतलब करना ही हूँ। जैसे कि मैं बताऊँ, मैं अभी फंक्शन था, बड़े बड़े फंक्शन में बोलने का कम होता हूँ, भाषण उन्हें देता हूँ, तो जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो भाषण के चक्कर में पढ़ाई को एक दिन छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन ये मेरा नहीं होता। जैसे कि भाषण है, चलो भाषण मैंने 2-3 घंटे तैयारी कर ली, लेकिन उसके अलावा भी मेरी जो स्टडी होती है उसको मतलब रेगुलर रही हूँ, भले मेहनत थोड़ा टाइम कम मिलेगा लेकिन वो होगा, जरूर करेंगे।
1: को आप इस सारी चीजों के लिए मोटिवेट करते हो, सुनते हो आपकी बातें?
0: सुनते हैं वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं इस बारे में, और मैं भी उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे कमजोर होते हैं मुझसे, कुछ मुझसे ज्यादा अच्छे होते हैं, जो मुझसे ज्यादा अच्छे होते हैं मैं उनसे सीखता हूँ, और जो मुझसे कमजोर होते हैं उनको मैं सिखाता हूँ, इससे दोनों का फायदा होता है, उनका और मेरा दोनों का।
1: बिल्कुल, आपकी ये जो थॉट है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यही जो चीज है वो एक इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है, इसलिए आप इस मोटिवेशन के साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं, दूसरे जो बच्चे हैं, उनको भी बहुत अच्छे से आगे जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा,
0: थैंक यू मैडम।
1: आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम हर्षित पटेल।
1: आप क्या करना चाहते हो बड़े होकर?
2: आई एम बिकम अ सिविल सर्विस ऑफिसर।
1: अच्छा, तो आप ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है, पढ़ाई में कैसे करना है, सारी चीजें आपको पता है?
2: मुझे 12th के बाद ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके UPSC की तैयारी करनी।
1: तो इन सारी चीजों को लेकर आपके शिक्षक आपको कैसे गाइड करते हैं? आपने अपना सपना कभी अपने टीचर्स को बताया है कि आप क्या बनना चाहते हो?
2: हाँ, मैंने अपना सपना अपने क्लास टीचर पल्लवी मालिवार मैम को बताया है।
1: तो उन्होंने क्या कहा आपसे?
2: उन्होंने कहा कि हमें जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है।
1: तो उसके लिए आप क्या करते हैं?
2: उसके लिए मैं अपनी पढ़ाई को रेगुलर करता हूँ और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाता हूँ।
1: बनाते हो? तो अभी के समय में हम देख रहे हैं ना कि चारों तरफ ये बातें हैं कि युवाओं को संभाल के रखो, युवा नशे से दूर रहे, बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, तो इन सारी चीजों को आप कैसे बदलना चाहते हैं, क्या ऐसी चीजें आप करते हैं?
2: इन सभी चीजों को बदलने के लिए मैं सिविल सर्विस लाइन में जाना चाहता हूँ।
1: तो उससे क्या बदलाव आएगा?
2: इससे मैं एक अच्छे पद पर जाऊंगा और इन सभी चीजों को रोकने का निश्चय करूंगा।
1: कैसे करेंगे, क्या योजना बना रखी है अपने मन में, कुछ सोच रखा है कैसे क्या करोगे?
2: मैं सिविल सर्विस की लाइन में जाऊंगा और फिर युवाओं को जागरूक करूंगा कि ये सब चीजों से दूर रहे।
1: आपको लगता है ये सारी चीजें गलत है?
2: हाँ।
1: कैसे गलत है?
2: ये सभी चीजें युवाओं को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों से समाज में पिछड़ापन आता है।
1: अच्छा, तो आपने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा गुस्सा या ऐसी सारी चीजें कभी की है?
2: नहीं,
1: कभी कुछ भी नहीं किया, ना घर पे, ना स्कूल में, ना किसी फ्रेंड्स के साथ, कभी कुछ नहीं किया?
2: नहीं।
1: बहुत से लड़के तो कर देते हैं, आपने क्यों नहीं किया?
2: नहीं आता गुस्सा।
1: नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है कि आपको गुस्सा नहीं आता और आप इन सारी चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं। तो आप अपनी जो चीज़ें हैं, भावनात्मक चीज़ें हैं, मानसिक तौर पर आप कभी किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो सबसे पहले आप किससे बात करते हैं?
2: मैं अपने परिवारजन से और गुरुजनों से बात करता हूं।
1: परिवार में सबसे पहले कौन?
2: अपने माता पिता और अपने भाइयों से।
1: माता पिता में भी माँ से या पापा से?
2: माँ से।
1: माँ से, माँ से ही क्यों सबसे पहले बात करते हो?
2: क्योंकि वो स्ट्रिक्टली नहीं समझाते,
1: प्यार से समझाते
2: हैं,
1: और पापा स्ट्रिक्ट समझाते हैं। पापा से कभी कभी कोई बात शेयर की है जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए उस बात को लेकर?
2: हाँ।
1: कौन सी बात?
2: 11th के रिजल्ट के बाद। 11th में मैंने पूरे साल पढ़ाई तो सही से की थी, पर जैसा रिजल्ट आना चाहिए था वैसा रिजल्ट नहीं आया।
1: ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था?
2: कहीं ना कहीं मेरी निरंतरता, तब मैं कंसिस्टेंट नहीं था पढ़ाई को लेकर,
1: और अब?
2: अब मैं कंसिस्टेंट हूँ।
1: अब क्या करते हो, आपने क्या रूपरेखा बना रखी है आपकी स्टडी की?
2: मैं रूपरेखा नहीं बनाई, मैंने अपनी पढ़ाई

0: टू डू लिस्ट के हिसाब से बनाता हूँ। मैं अपने डेली के टास्क बनाता हूँ जिसके हिसाब से मैं पढ़ाई करता हूँ।
1: कैसे बना रखे हैं टास्क? मतलब आप जो ये कार्यक्रम बच्चे सुन रहे हैं वो आपसे मोटिवेट हो सकते हैं, इसलिए मैं पूछना चाहूँगी आपने क्या बना रखा है ऐसा?
0: जैसे मैं डेली के, मतलब मेरे को इस चैप्टर का रिवाइज करना, फिजिक्स के चैप्टर का रिवाइज करना है, तो मैं एक टू डू लिस्ट तैयार करता हूँ जिसमें मुझे आज के 2 घंटे के लिए फिजिक्स पढ़नी है, तो मैं फिजिक्स का लिखता हूँ, केमिस्ट्री का लिखता हूँ और बायोलॉजी का लिखता हूँ, और उस हिसाब से मैं अपने दिन को शुरू करता हूँ।
1: फोन चलाते हो?
0: हाँ।
1: क्या क्या देखते हो फोन में?
0: फोन में मैं AI का इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ,
1: उसके अलावा
0: एडिटिंग सीख रहा हूँ।
1: उसके अलावा कोई सोशल मीडिया या ये सारी चीजें ध्यान भटकाती है आपका?
0: नहीं
1: नहीं लगता है। मोबाइल मतलब आपको ऐसा लगता है कि यूजफुल ही है?
0: हाँ।
1: थैंक यू।
2: साथियों, आज की बातचीत से हमें समझ में आ गया कि बच्चों को खुशहाल बचपन देने के लिए उनका साथ देना, उनकी बात सुनना और उनके सपनों का सम्मान करना जरूरी है। याद रखिए कि हर बच्चे को प्यार, भरोसे और आगे बढ़ने के अवसर की जरूरत होती है। इसी के साथ माता पिता उनकी भावनाओं को समझें, उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें कि किस तरीके से वो कल्पना करते हैं और किस तरीके से उन्हें मार्गदर्शन देना है। तो आशा करते हैं कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आप हमारे कार्यक्रम का पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारे पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: हमारा बीज देसी किस्म का है और उसमें कुछ पोषकता भी है
1: जी जी,
0: तो जो उसकी उपज आएगी, जो उसकी फसल आएगी वो हमारी पोषककारी भी होगी
1: जी जी।
0: तो उससे हमारे जो घर का जो अपने परिवार के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, तो उनका पोषण भी होता रहेगा
1: जी।
0: तो इस तरह से जब हम बाजार के बीज पे निर्भर कम हो जाएंगे और खुद के बीज को हम संभालना प्रारंभ कर देंगे तो हमें बीज स्वराज की अवधारणा को समझ में आएगा कि किस तरह से हम बीजों पे बाजार पे निर्भर नहीं है और हमारा इन चीजों में, क्योंकि हमारे खेत भी उन बीजों को समझ रहे हैं
1: जी बिल्कुल,
0: हमारे जो पोषण का जो हमारा पशु है वो भी समझ रहा है कि वो उसका कैसा चारा होता है, उनका भी तो हमें पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा
1: जी जी।
0: तो इसलिए से उन बीजों को हमें संभालना पड़ता है और बीज बैंक की अवधारणा को, ताकि वो बीज हमारा हाथ से कभी खो ना जाए
1: जी बिल्कुल,
0: तो उसको भी हमें समझ के रखना पड़ता है
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं अपने बीज को संभाल कर रखेंगे तो हम देखते हैं कि बीज स्वराज की जो अवधारणा है हम उसे पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खाद की जो स्वराज की कल्पना है उसे हम कैसे बनाकर रख सकते हैं।
0: ये खाद्य स्वराज यानी कि जो खाने के जो अनाज है, खाने के अनाजों में अपन देखते हैं कि हम कुछ अनाज की ऐसी फसलें जैसे गेहूं है, मक्का है, या जो मोटे अनाज की फसलें हैं, कुछ हमारे दालों की फसलों के रूप में देखते हैं कि हम अपना मूंग है, उड़द है, हमारे अरहर है, चावला है, ये इस तरह की हमें दालें वाली फसलें हैं। तेल की फसलों के रूप में देखते हैं कि हाँ हमारे पास तिल है, मूंगफली है, सरसों है, तो ये इनके रूप में, और इसके अलावा जितना भी हमारे सब्जियां हैं जो हमारा, तो क्योंकि जितने भी हमारी सब्जियां जो हमारे यहाँ अपन देखते हैं कि या तो जो कुछ ऐसी कुकर बीट्स जो कहते हैं ना, जो बेले वाली फसल
1: जी बिल्कुल सर,
0: जैसे ककड़ी है, लौकी है, तुरई है, जो भी बेलों पे लगती है
1: जी जी,
0: या जो हमारे जो प्राकृतिक रूप से जो सब्जियां हमारे यहाँ है, भिंडी है, करेला है, टमाटर है, जो भी सब्जियां हमारे हैं जो हमारे पोषण में खाद्य में काम आती, खाने में काम आती, क्योंकि इन चीजों से हमें शरीर के लिए पोषण मिलता है
1: जी हाँ।
0: जब अपन देखते हैं कि हमें पांच तत्वों की आवश्यकता होती है खाने में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, विटामिन कहते हैं, हमारा मिनरल कहते हैं, और हमारे इस तरह से हम जो पांचों चीजों को हमारे भोजन में रखते हैं, तेलों को रखते हैं
1: जी जी।
0: तो इससे हमारे शरीर की जो ताकत है वो बनी रहती है और हमारा भरण पोषण होता रहता है
1: जी।
0: और ये जो पांचों चीजें हैं वो हमारे विभिन्न फसलों से अलग अलग रूप में मिलती है
1: जी बिल्कुल।
0: कुछ तो जैसे जैसे दालें होती है, दालों में प्रोटीन की मांग होती है, अधिकता होती है, इस तरह से हम देखते हैं अनाज के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है
1: जी जी।
0: सब्जियों में विटामिन हमें प्राप्त होता है, फैट जो होता है वो तेली फसल में होता है जैसे सरसों है या तिल है या अपना मूंगफली है
1: जी।
0: तो इस तरह से हम जो भोजन के विभिन्न तत्व हैं वो इन सब्जियों और इन फसलों से हमें प्राप्त होते हैं
1: जी।
0: और ये फसलें क्योंकि हमें पता है कि हमारे बीज जो हैं वो पोषककारी हैं, उसमें अधिक मात्रा में पोषण तत्व है, तो हम उनका भी हमें अपने फसल के अंदर बचा के रखना पड़ता है, इसलिए वो बीज को और खाद्य को हमें जोड़ के रखना पड़ता है
1: जी बिल्कुल।
0: कि उन खाद्य फसलों को हमें उसका ज्ञान हो, उन खाद्य फसलों को हमें खेत पे लगाएं और उन खाद्य फसलों को हम अपना बीज संभालें। साथ में जब हम स्वराज की बात करें तो हमें अपना खाद भी जो है ना, जो कहते हैं अपना फर्टिलाइजर
1: जी बिल्कुल,
0: उसको हमें जैविक खेती के रूप में काम में लेना चाहिए। जैविक खेती से क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारे गाय है, भैंस है, या जितना भी हमारे पौधों के पेड़ वगैरह पौधों के जो पत्ते हैं, शाखाएं हैं, उनसे हमारा जो खाद बनता है, कंपोस्ट कहते हैं अपन, तो उनसे भी बनता है, गौमूत्र से भी हमारा खाद का रूप में काम आता है, या हमारे घरों के अंदर जैसे अपन कहते हैं ना, कई हमारे जो राख है या छाछ है या दही है, घी है, ये भी हमारा, क्योंकि ये सब इसके रूप में हम जीवामृत है, बीजामृत है, ये जितने भी हमारे जैविक खेती के आदान है जो उर्वरक के रूप में है या कीटनाशक के रूप में है या हमारे फसल को बढ़ाने के रूप में
1: जी बिल्कुल,
0: फसल वृद्धि के लिए भी हमें आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीजें हमारे घर पे उपलब्ध है
1: जी हाँ।
0: तो हम इसके स्वराज के रूप में इनकी खेती को भी किस तरह से अपनाएं, हम फसल को अपनाने के लिए, बचाने के लिए, बीज को बचाने के लिए हम उस तरह से खेती करें कि उनका हर एक साल में उन सारों पौधों फसलों का लगाए
1: जी।
0: इसलिए हम मिलवा खेती की बातें भी करते हैं कि जब हम मिलवा खेती होती है या मिश्रित खेती कहते हैं, बैठे हैं, तो उसमें क्या है कि कई सारे जैसे खरीफ के अंदर हम एक ही खेत के ऊपर 12 से 15 फसलों को लगा लेते हैं, तो उसमें क्या है कि 12 से 15 फसल लगा लेंगे, उसकी उपज हमारे खाने में भी काम आएगी
1: जी जी।
0: और उसका बीज भी हमारे पास हर साल उपलब्ध हो पाएगा
1: जी बिल्कुल।
0: तो हमारे बीज बैंक में जो हमने पिछले साल बैंक बीज लिया है तो वो वापिस उसमें नया बीज आ जाएगा
1: जी हाँ।
0: तो जब फसल चक्र के अंदर या अपना मिलवा खेती के रूप में हम जब ऐसी फसल लेते हैं तो हमारे प्रतिवर्ष बीज हमारा रोटेट भी होता रहता है
1: जी बिल्कुल।
0: और बीज बैंक में बनाएंगे तो हम क्या है कभी कभी हम कुछ फसलों को नहीं भी कर पाते हैं, तो हम उस बीज बैंक से हमारे जो गांव के दूसरे साथी हैं उनको भी दे सकते हैं
1: जी हाँ।
0: उनका बीज नया कोई बीज उनके पास है तो वो भी हम ले सकते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से बीज की स्वराज की अवधारणा या खाद की अवधारणा हमारे इस तरह से जारी रहती है
1: जी बिल्कुल।
0: और हमारे खेत पे हमें बाजार के ऊपर दूसरे जगहों पर हमें आधारित नहीं हो पाता। और ये भी हमारा है कि हमारे जो कृषि लागत में भी कमी आती है इससे कि जब हम खुद का ही हमारे पास बीज है तो हमें बीज खरीदना नहीं है
1: जी हाँ।
0: जब हमें बुआई करनी है तो हमारे पास बीज उपलब्ध है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास खेत बुआई करनी है और बीज उपलब्ध नहीं है, बाजार में देखते हैं तो बाजार में बीज मिल नहीं रहा, कई बार हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते
1: जी जी।
0: तो इन चीजों से बचने के लिए हम जब बीज बैंक और बीज और हमारा खुद का बीज है जिसपे हमें पूरा भरोसा भी है, पोषककारी भी है और हमारे जलवायु के अनुरूप भी है, तो इसीलिए हम बीज स्वराज की बात करते हैं, खाद्य स्वराज की बात करते हैं, ताकि हमारे पोषक तत्व शरीर की बनी रहे, बीजों की उपलब्धता बनी रहे और हमारा जो वातावरण है जो उसके अनुरूप है वो उसमें लागू होता रहे
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने आज कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को बता दिया है कि बीज स्वराज और खाद्य स्वराज क्या है, और इसी के साथ हम ये भी जान पाए कि खाद का जो स्वराज की जो कल्पना है हम वो कैसे पूरी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहनों का खुद का बीज होगा, खुद के खाद होंगे, खुद के कीटनाशक पदार्थ होंगे, तो उन्हें बाजार की जो निर्भरता है वो उनकी कम हो जाएगी, साथ ही लागत उनकी जो है वो भी कम होगी, तो उससे उनके जो उत्पादन में वृद्धि होगी, उसी के साथ उनकी आजीविका के जो साधन है वो भी बढ़ जाएंगे
0: बिल्कुल, उसकी बचत भी बचेगी
1: जी बिल्कुल।
0: और उससे क्या है कि उस पैसों से वो अच्छे दूसरे काम भी कर सकता है, अपने परिवार के लिए जो संपन्नता है उसको भी ला सकता है
1: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी अच्छी जानकारी से आपने हमें अवगत करवाया,
0: धन्यवाद।
1: जेम की किसान भाई बोनो अवड़े अपड़े वेस में प्रमोद जी रोकड़िया सर जुड़े तक ने इणा अपड़ा ने घनी असल तरीका तक ही बताड़ दीदु है कि हर ते गांधी जी ना जे स्वराज की कल्पना थी इन्हें अपने पूरी करी सका। किसान भाई बोनो आशा कर रहा हूँ कि ऐसे खाद ने बीज स्वराज ने लेने जे भी हमारी अब तक की बातें रही है ये बातें आपने गमी होंगा ने अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ा पर जाते पहले हमारी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा

किसान भाई बहनों, अनस की थाते हमें कार्यक्रम खेती बाड़ी तक पड़ा सूटा। आशा कर रहा हूँ की ऐसे कार्यक्रम में हमारी आप तक जी भी बातें रही है, ये बातें अपनी कमी होगा। तो भाई बहनों, आपने अमरु आज कार्यक्रम केव लगे इन्हें बारे में आप राय सुझाव अमने आली सको अमरे अना पता माते। अमरु पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमरु पिनकोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी सको अमरे अना फोन नंबर माते। अमरु फोन नंबर है 9460051234। तो भाई बहनों, फेरी मलंगा अनस कार्यक्रम में अनस टेम माते एक नया विषय ने हाते। तारुदी राम राम राम राम।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
1: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा विषय रहने वाला है साथियों आपसे बातचीत का, तन के साथ मन की सेहत भी जरूरी है। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं अंजलि कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है श्रोताओं कि शरीर की तरह हमारे मन को भी देखभाल की जरूरत होती है। अगर शरीर में दर्द हो तो हम उसे पहचान लेते हैं, चोट लगे तो उसका इलाज करवाते हैं, बुखार आए तो आराम करते हैं, लेकिन जब मन थक जाता है, चिंता बढ़ जाती है, किसी बात का बोझ महसूस होता है या हम लगातार उदास रहने लगते हैं, तब क्या हम उतनी ही गंभीरता से अपने मन की सेहत पर ध्यान देते हैं?
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इसी विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी। आज हम जानेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कि तन की सेहत जरूरी है, लेकिन तन के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि स्वस्थ मन ही हमें सही सोचने, समझने, निर्णय लेने, रिश्ते निभाने और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है।
1: जी हाँ।
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए क्यों न कार्यक्रम का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें?
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं तन के साथ मन की सेहत भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि अंजलि, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है हम अपनी भावनाओं को समझ सके, तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सके, दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सके और रोजमर्रा के जीवन में अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। हर व्यक्ति के जीवन में कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। कभी आत्मविश्वास बढ़ता है तो कभी मन में डर या चिंता पैदा होती है। इन भावनाओं का होना सामान्य है श्रोताओं, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें दबाने के बजाय समझने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल शाकृति जी, श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे एक छोटे से संवाद के माध्यम से कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति परेशान है और चुपचाप बैठा है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें क्या करना चाहिए? शायद हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। तो श्रोता साथियों, इसका जवाब है कि बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पूछना ही नहीं बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनना भी जरूरी है। क्योंकि जागृति जी, कई बार व्यक्ति को तुरंत सलाह नहीं चाहिए होती है, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो बिना मजाक उड़ाए, बिना जज किए उसकी बात सुन सके।
0: बिल्कुल। तो हमारे शरीर और मन का रिश्ता इसी तरह बहुत गहरा है श्रोताओं। जब हम तनाव में होते हैं, नींद प्रभावित हो सकती है, भूख में बदलाव हो सकता है, शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है, सिर दर्द या बेचैनी जैसी परेशानियां भी महसूस हो सकती है। इस तरह जब शरीर लंबे समय तक थका हुआ रहता है अंजलि, पर्याप्त आराम हमें नहीं मिल पाता या हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित करके देखना सही नहीं है श्रोताओं। स्वास्थ्य का अर्थ है तन भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: आज की तेज जिंदगी में तनाव एक आम अनुभव बन गया है। बच्चों पर पढ़ाई का दबाव हो सकता है, युवाओं को पढ़ाई, रोजगार और भविष्य की चिंता हो सकती है, परिवार के बड़े सदस्यों को घर, काम और आर्थिक जिम्मेदारियों का तनाव हो सकता है। लेकिन तनाव महसूस करना कमजोरी नहीं है बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि जागृति जी, हम तनाव को पहचाने और स्वस्थ तरीके से उसका सामना करें। उसके लिए हम थोड़ा सा आराम करें, पर्याप्त नींद लें, अपने भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, प्रकृति के करीब समय बिताएं, अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधि करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि ये सभी स्वस्थ कदम हो सकते हैं जिससे हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेगा।
0: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है, यही अगर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें कि मन की बात मन में दबाकर न रखे श्रोताओं। साथियों, हमारे समाज में आज भी कई लोग अपनी परेशानी किसी से साझा करने में झिझकते हैं। कभी उन्हें लगता है अंजलि कि लोग क्या कहेंगे, कभी लगता है कि अपनी परेशानी बताना कमजोरी है। लेकिन साथियों, सच्चाई ये है कि अपनी भावनाओं के बारे में बात करना कमजोरी नहीं है बल्कि अपने मन की देखभाल करने का एक तरीका है। अगर किसी बात से मन परेशान है तो किसी भरोसेमंद परिवारजन, मित्र, शिक्षक या अन्य विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर सकते हैं। और यदि परेशानी लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगी तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेना भी बिल्कुल उचित कदम है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि परिवार केवल वो जगह नहीं जहां हम रहते हैं, परिवार तो वो स्थान है जहां हमें अपनापन और सुरक्षा का एहसास मिलता है। इसलिए घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी बात को कह सके। बच्चा अगर अपनी परेशानी बताए तो तुरंत डांटने के बजाय उसकी बात को आप जरूर सुने। युवा अगर अपने भविष्य को लेकर चिंतित है तो उसकी तुलना दूसरों से करने के बजाय उसका हौसला बढ़ाए। घर के बुजुर्ग अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो उनके साथ आप समय बिताएं। कभी कभी कुछ मिनट की बातचीत भी किसी के लिए बहुत मायने रखती है। एक सवाल पूछिए कि आप कैसे हैं और जवाब सुनने के लिए थोड़ा समय भी दीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आज हम कार्यक्रम में जान पा रहे हैं कि किस तरीके से तन के साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है और किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य अगर हमारा सही रहता है तो हमारा जो जीवन है उसमें कहीं तरीके की चीजों में बदलाव आता है।
0: बिल्कुल।
1: आशा करते हैं कि ये बातें श्रोता साथियों को पसंद आ रही होगी। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम श्रोता साथियों के साथ अवश्य करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि मन की बात को मन में दबाकर नहीं रखना है, और इसी के साथ हम जान पाए कि परिवार बन सकता है सबसे मजबूत सहारा। क्योंकि जागृति जी, हम देखते हैं कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं और घर परिवार के सदस्य से बातचीत करते हैं, तो हमारा आधे से ऊपर तनाव यूं ही खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, बच्चों और युवाओं के मन को समझना भी जरूरी है। कहना चाहेंगे कि बच्चों की मानसिक सेहत पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना हम उनकी पढ़ाई और शारीरिक स्वास्थ्य पर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी के सीखने की गति अलग हो सकती है, किसी की रुचि अलग हो सकती है, तो किसी की क्षमता अलग। इसलिए बच्चों में लगातार तुलना करने के बजाय उनकी खूबियों को पहचानना चाहिए। युवाओं के सामने आज शिक्षा, रोजगार, करियर, सामाजिक अपेक्षाएं और भविष्य को लेकर जागृति जी कई तरह की चुनौतियां हो सकती हैं। उन्हें केवल यह कहना कि मजबूत बनो पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि अगर कभी कोई मुश्किल लगे तो बात करने के लिए कोई आपके साथ है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गलत धारणाएं भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: कुछ लोग मानते हैं कि मानसिक परेशानी केवल कमजोर लोगों को होती है, तो यह सही नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन का सामान्य हिस्सा है और किसी भी व्यक्ति को कभी भी भावनात्मक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
1: जी हाँ।
0: दूसरा भ्रम यह है कि मानसिक परेशानी की बात करने से समस्या बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में जागृति जी, सुरक्षित और भरोसेमंद व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, अपनी भावनाओं को उन्हें बताते हैं और वो हमारी भावनाएं समझते हैं, हमें सहायता देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मजाक, ताने और भेदभाव के बजाय श्रोताओं समझ, संवेदनशील और सहयोग की जरूरत जरूर अपनाएं। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि मन को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है। हम छोटी छोटी अच्छी आदतों से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि सुबह कुछ समय खुली हवा में बिताना, नियमित शारीरिक गतिविधि करना, पर्याप्त नींद लेना, संतुलित भोजन करना, परिवार से बातचीत करना, अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधियां करना और दिन भर में कुछ समय स्क्रीन से दूर रहना। ये जो आदतें हैं अंजलि, स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि आप अपनी भावनाओं को पहचाने जरूर। कभी खुद से पूछे कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या कैसा महसूस कर रही हूँ। अगर जवाब अच्छा है तो उस खुशी को महसूस करें। अगर मन परेशान है तो खुद को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश करें कि परेशानी की वजह क्या है और मुझे किस तरह की सहायता की जरूरत है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसमें समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि सच्चा स्वराज केवल अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब समुदाय का हर व्यक्ति एक दूसरे की चिंता करे। गांव में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अकेला है तो उससे बातचीत की जा सकती है। अगर कोई बच्चा लगातार परेशान दिखाई देता है तो परिवार और शिक्षक मिलकर उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस कर रहा है तो समुदाय उसके साथ समय बिता सकता है। क्योंकि श्रोता साथियों, एक स्वस्थ समुदाय वही है जहां लोग केवल एक दूसरे की जरूरतों को नहीं बल्कि एक दूसरे की भावना को भी समझते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि। तो साथियों, अब आपसे एक छोटी सी अपील है कि आज आप अपने घर में किसी एक व्यक्ति से जरूर पूछिए कि आप कैसे हैं, और जब जवाब दे तो मोबाइल एक तरफ रखकर उसकी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। शायद आपकी छोटी सी कोशिश किसी के दिन को बेहतर बना देगी। आप हमें ये बता भी सकते हैं कि आपके गांव या मोहल्ले में लोग मानसिक तनाव कम करने के लिए क्या करते हैं।
0: जी,
1: क्या परिवार में लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, क्या बुजुर्गों के साथ समय बिताया जाता है। आपके अनुभव और सुझाव हमारे लिए श्रोताओं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चा स्वराज केवल बाहर की आजादी नहीं है साथियों, ये अपने विचारों को समझने, अपनी भावनाओं को पहचानने और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनने की दिशा में भी एक नया कदम है। अंजलि, जब व्यक्ति अपने मन को समझता है और अपनी परेशानियों को स्वीकार करता है और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में संकोच नहीं करता, तो भीतर से मजबूत बनता है। और जब मजबूत व्यक्ति मिलकर परिवार बनाते हैं, मजबूत परिवार मिलकर समुदाय बनाते हैं और मजबूत समुदाय मिलकर समाज को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, ये परिवार का विषय है, ये समुदाय का विषय है और ये समाज का विषय है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज की हमारी बात को एक छोटी सी पंक्ति में हम याद रख सकते हैं, जैसे कि शरीर की थकान आराम मांगती है और मन की थकान अपनापन।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखें, लेकिन अपने मन की आवाज को भी सुने। अपने परिवार के लोगों से बात करें, दूसरों की बातों को ध्यान से सुने किसी की परेशानी का मजाक न बनाएं, जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच न करें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार बनता है, स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समुदाय बनता है और स्वस्थ समुदाय से मजबूत समाज बनता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हम अपने मन में ये चीजें ठान सकते हैं कि न मन की परेशानी को नजरअंदाज करेंगे, न किसी की परेशानी का मजाक बनाएंगे, बात करेंगे, सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर सहयोग का हाथ भी बढ़ाएंगे। यही संवेदनशीलता है, यही जिम्मेदारी है और यही सच्चे स्वराज की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।
1: बिल्कुल। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपने तन का भी ख्याल रखें और अपने मन का भी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vakthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतीनु खवानु सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम घूमर हमारी अमर हित बुन ने आपनी बुन मनीषा ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। होवे बहन बोनो आप सब हामली रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नो स्वागत करे हाँ हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे बहन बोनो लेने हाजिर थी गये हाँ कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय में हाथे तो मनीषा बोन आज अपने कार्यक्रम में बहन बोनो ते की बातचीत विषय है कि आपड़े सूर्य ने खाली विदास नहीं करू बल्कि विरासत भी आलवी है।
0: होवे
1: किम की आपड़ा देखो हाँ की अपने समाज में बेटियों ने जन्म था तई वगत तक की लई ने इनी विदाई उठी घना का निरस में थाए हैं। सूर्य ने सित्र खरीदवो गहना बनाबो शादी ने हित सामान खरीदवो घना का नी चीजे आपड़े सम्मान पूर्वक ने घनी भावुकता तक की आपड़ी सूर्य ने आपड़े घर तक की विदा कर रहा हूँ। पर आज ना टाइम में थोड़ी आ चीजे ने थोड़ा जे सवाल है ये बदल के हैं कि आपड़े अपनी बेटी ने केवल विदा नहीं करो बल्कि इने आपड़ी जिम्मेदारी भी नहीं भी हम सो इने साथे या पसे इने एवी विरासत आलो जिन तकी विदा थावा बाद भी ई आपड़ा घर में आत्मविश्वास ने सम्मान ने हाते आपड़ू जे जीवन है ई जीवी शके।
0: होवे अंजलिबुन
1: तू मतलब मनीषा बुन केवल जमीन जायदाद गहनो या घर नो हिस्सो नहीं बल्कि सूर्य ने एवी शिक्षा आलो संस्कार आलो या अपना फैसला लेवानी हमस आलो आर्थिक जानकारी आलो अपना अधिकार नी जानकारी आलो मुश्किल टाइम में भी अपना साहस ने हाथे उभी रहवानी विरासत भी अपने बुना ने आलवी है। आज कार्यक्रम घूमर में बड़ी सोच माते से अपने बात करेंगा कि सूर्य ने खाली विदास नहीं करवो बल्कि विरासत में घना कनी चीजें अपने अपने सूर्य ने अपना ने आलवो होगा।
0: होवे अंजलि बोन तो अना विषय माते कार्यक्रम ने माध्यम कती अपने भाई बुने कती घना अक्का नी बाती रहेगा पण कार्यक्रम नी शुरुआत में हमला गीत ने मोरे करा अपनी बाती।
1: होवे तो भाई बुनो आप हमरते रेजू आपड़ू रेडियो अपनी बाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं आपसे एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है और इस यात्रा में कभी हमें असफलता मिलती है तो कभी हमें सफलता मिलती है। कभी हमारे पास खुशियाँ होती है साथियों, तो कभी हम चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे समय में जो शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, यानी कि जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है और हमारे सपनों को पंख देती है, उसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि प्रेरणा वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार करती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है और प्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो बातें ढेर सारी होंगी दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ आप सभी को मनोरंजन करवाते हैं, तो आज भी श्रोता साथियों यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ रहा है कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जैसे कि साथियों, गीत से पहले मेरी आपसे कुछ बातें रही थी कि हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है, जहाँ हमें सफलता मिलती है तो वहाँ हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। कभी हमारे पास ढेर सारी खुशियाँ होती हैं तो कभी दुख होता है, और कभी चुनौतियों का सामना हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। ऐसे में श्रोता साथियों, प्रेरणा ही एक ऐसी चीज है जो हमें गिर कर उठना सिखाती है। और दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया भी था कि कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि क्या यह किसी पुस्तक में मिलती है, या फिर किसी व्यक्ति से मिलती है, या फिर ये हमारे भीतर ही छिपी हुई है जिसे हम जान नहीं पाते हैं। अगर बताऊं श्रोता साथियों, तो वास्तव में प्रेरणा का कोई एक स्रोत नहीं होता। ये जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हमारे अपने विचारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। आवश्यकता दोस्तों केवल उसे पहचानने की होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का मतलब होता है किसी अच्छे कार्य के लिए मन में जागृत होने वाली सकारात्मक भावना। दोस्तों, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होते हैं और जब हमारे भीतर कुछ नया करने की इच्छा पैदा होती है, तो हम देखते हैं कि उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम कठिनाइयों से हार नहीं मानते साथियों, तब प्रेरणा हमारे साथ होती है। यानी कि प्रेरणा केवल बड़े कार्यों के लिए नहीं होती। जैसे कि एक छात्र को पढ़ाई के लिए, एक किसान को खेती के लिए, एक खिलाड़ी को अभ्यास के लिए साथियों, और एक कलाकार को सृजन के लिए, वहीं एक सामान्य व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारे अपने सपने। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ सपने तो होते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक या उद्यमी बनना चाहते हैं। दोस्तों, यही सपने जो होते हैं वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखता है ना साथियों, तब हमारे भीतर उन्हें पूरा करने की लगन भी पैदा हो जाती है। सपने हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बताया जाए तो सपनों के बिना जीवन दिशाहीन हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपने केवल सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए भी देखने चाहिए। वह सपने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं। तो ये तो श्रोता साथियों, हम जान पाए हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सपने होते हैं। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही हमारी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि प्रेरणा आखिर हमें मिलती कहाँ से है, जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि प्रेरणा प्राप्त करने का सबसे जरूरी माध्यम है सपने, और सपने वो होते हैं जो हम सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए देखते हैं, और उन्हीं सपनों को पूरा करने की लगन हमारे अंदर पैदा होती है। यही दोस्तों अगर बात करूं परिवार से मिलने वाली प्रेरणा की, तो हमारे जीवन की पहली प्रेरणा अक्सर हमारे परिवार से ही हमें मिलती है। माता पिता का संघर्ष, उनका परिश्रम और उनका त्याग हमें श्रोता साथियों बहुत कुछ सिखाता है। देखते हैं कि एक पिता जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वहीं एक माँ जो हर परिस्थिति में परिवार को संभालती है, श्रोता साथियों वह धैर्य, प्रेम और समर्पण की मिसाल बन जाती है। वहीं दादा दादी और नाना नानी के अनुभव भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष और उनके जीवन के अनुभव हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि हमारे जीवन में हमें पहली प्रेरणा हमारे परिवार से मिलती है। यही अगर महान व्यक्तियों के जीवन की प्रेरणा के बारे में जाने, तो इतिहास और वर्तमान समय में ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सकती है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी श्रोता साथियों, तब हमें ये समझ आता है कि सफलता आसान नहीं होती लेकिन असंभव भी नहीं होती। महान व्यक्तियों की सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम होता है, अनुशासन होता है, धैर्य होता है और संघर्ष छिपा हुआ होता है। दोस्तों, उनके जीवन की कहानियां हमें ये सिखाती है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। प्रकृति भी श्रोता साथियों हमें इस तरीके से ही प्रेरणा देती है, क्योंकि प्रकृति को हम एक महान शिक्षक मानते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का हर तत्व हमें कोई ना कोई नया संदेश देता है। जैसे कि उगता हुआ सूर्य हमें हर दिन नई शुरुआत का संदेश देता है, वहीं बहती हुई नदी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। दोस्तों, प्रकृति के जो विशाल वृक्ष होते हैं वे हमें धैर्य और मजबूती का महत्व समझाते हैं, और जो छोटे छोटे बीज हैं वह हमें बताते हैं कि बड़े परिवर्तन छोटी शुरुआत से ही होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से प्रकृति का अवलोकन करने वाला व्यक्ति जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने लग जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रेरणा केवल सफलता से ही मिलेगी, जबकि दोस्तों वास्तविकता ये है कि कई बार सबसे बड़ी प्रेरणा असफलताओं से ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, तब वह पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरता है। साथियों, असफलता हमें हमारी कमियों को पहचानने का अवसर देती है, क्योंकि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा साथियों, सफलता का आनंद भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने की आवश्यकता है हमें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि हमारे पास ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कोई किसान दिन भर मेहनत करके, त्याग करके सफलता प्राप्त करता है, कोई छात्र कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करता है, वहीं कोई महिला आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई पहचान बनाती है। दोस्तों, ऐसी ही वास्तविक कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती है कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्रेरणा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें किसी एक स्थान पर मिल जाए। ये तो श्रोता साथियों हमारे सपनों में, हमारे परिवार में, प्रकृति में, महान व्यक्तियों के जीवन में और सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों से बढ़कर आगे बढ़ने में हमें मिलती है। आवश्यकता केवल अपनी आंखें, मन और विचार खुले रखने की है। दोस्तों, जब व्यक्ति प्रेरणा के इन स्रोतों को पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने का साहस देती है। साथियों, इसलिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, अपने जीवन में प्रेरणा खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अपने सपनों को पहचानिए, अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने आसपास की सकारात्मक बातों से सीखिए साथियों, और निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प ले लीजिए। याद रखिए, उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से भरी जाती है। यदि आपके भीतर भी श्रोता साथियों विश्वास और प्रेरणा है तो आपके सपनों का आकाश असीमित होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, और बातें भी मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं, तो विदा जरूर लूंगी। लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक प्रेरणादायक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: भाइयों ने बोनो जेवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियों बोनों रिश्तों है जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागर रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बोन हूँ था का अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुना

पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। होटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।